FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की छठी तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026 प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। सवेरे के 6 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे।

0: गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारत।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, बीते हुए कल की चिंता आज की रोशनी को धुंधला कर देती है। सच्ची दौलत अच्छे रिश्ते और शुद्ध विचार हैं, इसलिए हर सुबह को एक नए मौके के रूप में देखें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ। आज आप सुनिएगा इस पाठ का भाग 201। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार है शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का 5वां भाग। प्रस्तुति है रूपाली रूपक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हमेरा ही प्यार के। 8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार सुनील दत्त पर। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 बजे सुनिए पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। बांसुरी वादक पारसनाथ से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे तय करेंगे सुरीला सफर। पर सुनिए सदा बहार नगमे और 3 बजे सुनिएगा सखी सहेली। 4 बजे पिटारा में सुनिए आज के मेहमान में डॉक्टर सुनीता दुबे से यूनुस खान की बातचीत। प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन। 7 बजे सुनिए जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए राग अनुराग। 8 बजे सुनिए हवा महल में नाटक यादों की परछाइयां का 3रा भाग। लेखन है सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशन है दीना नाथ का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए। रात 10 बजे सुनिए छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। 6:35 होने वाले हैं, आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ।

भारद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानी हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्यारत हूँ। मुझे श्री राम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 201।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें चर्चा की जा रही है स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों के बारे में। कल आपने सुना था राग वृंदावनी सारंग, आज आपको सुनवा रहे हैं राग धनाश्री।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को सादर प्रणाम। पिछली कड़ी में मैं आपको 19वीं शताब्दी के महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा हिंदी भाषा में रचित बंदिशों के बारे में बता रही थी। आज उनकी एक और कृति पेश करती हूँ जो राग धनाश्री में है। इसकी शैली भी कुछ ध्रुपद जैसे है। साहित्य इस प्रकार है। शीस गंग भस्म अंग अर्धंग गौरी संग, यानी कि बंदिश शिव जी की स्तुति में है। वैसे तो स्वाति तिरुनाल विष्णु भक्त थे और अधिकतर कृतियां पद्मनाभ स्वामी की स्तुति में हैं। तिरुवनंतपुरम में जो पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है वह बहुत ही मशहूर है और महाराजा के परिवार के सदस्य सदियों से यहाँ की विशेष पूजाओं में भाग लेते आए हैं। एक और बात भी बताना चाहूँगी, हिंदी भाषा में महाराजा स्वाति तिरुनाल ने जो कृतियाँ बनाई उनके अलावा 42 श्लोक, एक नवरत्न मालिका, 4 राग मालिकाएँ, 39 संस्कृत बंदिशें, ये सब भी उन्होंने बनाई। एक बंदिश तो कन्नड़ा भाषा में भी है और एक है मलयालम में। एक और है मणिप्रवालम, अर्थात अनेक भाषाओं के मिश्रण से भी बनाए हैं। इतना सब उन्होंने 34 वर्ष की आयु में ही बना ली थी। तो आइए अब आपको सुनाती हूँ धनाश्री राग में एक ध्रुपद शैली में बनाई हुई कृति। धनाश्री राग भीमपलाश से मिलता जुलता है और स्वर दोनों में एक ही जैसे लगते हैं। तो सुनिए शीस गंग, स्वाति तिरुनाल महाराजा की कृति।

ये थी धनाश्री राग में महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित एक ध्रुपद शैली की बंदिश। धनाश्री राग ज़्यादातर भीमपलास राग से मिलता जुलता है। अब सुनिए एक फिल्म संगीत जो राग भीमपलास के स्वरों पर आधारित है।

0: राग भीम पलासी पर आधारित ये गीत था फिल्म राम राज्य से, आवाज थी सरस्वती राणी की। कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग धनाश्री। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है

संगीत की मधुर पाठशाला हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत सरिता। आकाशवाणी युवा का ये सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7 बजे है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

कार्यक्रम नमस्कार अलवर में हमारे तमाम श्रोता का हार्दिक अभिनंदन है। लेकिन श्रोताओ, फिर एक नई सुबह, नई सुबह का नया दिन, नए दिन का नया सूरज लेकर आया है आपके लिए कुछ खास।

हज़रत इस्माइल को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। चलिए बातें आपसे करेंगे आज इसी विषय पर। फिलहाल सुनते हैं यहाँ ये गीत।

श्रोताओ, आज हम बात करेंगे ईद उल जुहा त्यौहार पर। जी हाँ श्रोताओ, ईद उल जुहा जिसे बकरीद भी कहा जाता है, मुख्य रूप से अल्लाह के प्रति हज़रत इब्राहिम की अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाई जाती है। यह पर्व पैगंबर इब्राहिम के उस महान बलिदान का प्रतीक है जब वे अल्लाह के हुक्म पर अपने सबसे प्रिय पुत्र

श्रोताओं, जानते हैं अब ईद उल जुहा से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। श्रोताओं, इनके कुर्बानी का कारण था कि इस्लामिक मान्यता के अनुसार अल्लाह ने सपने में हजरत इब्राहिम से उनकी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी थी, तो उन्होंने अपने पुत्र को सबसे अधिक प्यार किया, इसलिए वह अल्लाह की रजा के लिए बेटे की बलि देने लगे। चमत्कार ये हुआ कि जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ने उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर एक चमत्कार किया। हजरत इस्माइल की जगह एक टुंबा भेड़ जैसा जानवर आ गया और उनके बेटे की जान बच गई। कुर्बानी की परंपरा इसी तरह से ऐतिहासिक घटना के समान ईद उल जुहा के दिन मुसलमान अल्लाह की राह में बकरे या अन्य वेद पशु की कुर्बानी देते हैं और इस बात का संकल्प लेते हैं कि वे अल्लाह के आदेश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जो मेहनत से देश सजाए, ESIC

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जो मेहनत से देश सजाए, ESIC हर कदम पर साथ निभाए। सुख हो या संकट की घड़ी, ESIC साथ है हर घड़ी।
3: 1952 से आज तक ESIC बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी, हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
2: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
3: ESIC 75 वर्षों से हर दिन हर श्रम के साथ।
4: चिंता से मुक्ति।
5: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर, और हम बात कर रहे हैं आज ईद उल जुहा पर। श्रोताओ, इस त्योहार के माध्यम से त्याग, दान और करुणा का भाव प्रकट होता है। समुदाय तथा मित्रों के बीच संबंध मजबूत होते हैं। यह त्योहार लोगों में क्षमाशीलता और जरूरतमंदों की सहायता करने की भावना को प्रोत्साहित भी करता है। इसके साथ ही श्रोताओ, भारत समेत दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लिए बकरीद बेहद खास और पवित्र त्यौहार है। इस दिन लोग सुबह की नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी की रस्म भी निभाते हैं। अब सुनते हैं यहाँ ये गीत।

جو سب کو وہ دل نواز ہے تو، نیاز مند ہے سب کو

श्रोतो, इस त्योहार का मुख्य संदेश अल्लाह पर पूर्ण विश्वास, दान, भाईचारा और जरूरतमंदों की मदद करना है। यह इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने के जिलहिजा की 10 तारीख को मनाया जाता है। इसके साथ ही बकरीद का पर्व चांद के दीदार पर निर्भर करता है। आज चांद दिखता है तो कल आपकी ईद है और आप सभी को ईद की बहुत बहुत

तो श्रोताओ आप दीजिए कार्यक्रम नमस्कार अलवर से हमें कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। आकाशवाणी अलवर का ये सरस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत की पहले प्रस्तुति सुनिए फिल्म बेताब से, आवाज लता मंगेशकर और शबीर कुमार की। गीत की रचना आनंद बख्शी की, संगीत आर डी बर्मन का।

बेताब फिल्म के गीत में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शबीर कुमार को, गीत संगीत आनंद बख्शे और आरटी बर्मन का। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। आप सुनते हैं यहाँ ये संदेश।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लीजिए सुनते हैं बेटा फिल्म का ये गीत, आवाज़ अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की, गीत रचना समीर की और तर्ज बनाई आनंद मिलंद ने।

0: बेटा फिल्म के गीत में आप सुन रहे थे अनुराधा पोडवाल और विपिन सचदेवा को। श्रोताओ आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल सी।
1: जो मेहनत से देश सजाए, ESIC हर कदम पर साथ निभाए, सुख हो या संकट की घड़ी, ESIC साथ है हर घड़ी।
2: 1952 से आज तक ESIC बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी, हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
1: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
2: ESIC 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से ये गीत, आवाज पप्पी लहरी और आशा भोसले की। इस गीत की रचना की है इंदिवर ने, संगीत बप्पी लहरी का।

0: पति पत्नी और तवायफ, इस फिल्म के गीत में आप सुन रहे थे सलमा आगा और मोहम्मद अजीज को। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और श्रोता इसी गीत के साथ संपन्न हुआ फिल्म संगीत। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
5: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
4: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
6: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति

0: एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
2: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
3: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है, जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमेरिकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक

0: चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
2: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है धर्मशाला

0: का नहीं है भारत, पत्र लिखता है जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत के महफिल में आज के फनकार हैं अनुराधा पौडवाल, चंदन दास और पंकज दास। सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला कलाम।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जो मेहनत से देश सजाए, ESIC हर कदम पर साथ निभाए। सुख हो या संकट की घड़ी, ESIC साथ है हर घड़ी।
3: 1952 से आज तक ESIC बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी। हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
2: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
3: ESIC 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज के फनकार थे अनुराधा पौडवाल, पंकज दास और चंदन दास। और अब होता है कार्यक्रम का समापन। आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। सवेरे के 8:30 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
0: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
0: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
0: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
0: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
0: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
2: जी,
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
0: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
0: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
0: जैसे
2: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
0: जी,
2: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
0: जी, इसलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
0: अविमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास, जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
0: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
0: हाँ, वो क्या?
2: 17

0: 19वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
0: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप

0: आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
2: होशियार,
1: समझदार।
2: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
3: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
4: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना, और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
5: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
6: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
5: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
6: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाए हो नहीं सकता।
5: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
7: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
6: क्या बात है,
7: सुनकर ही जोश आ गया।
6: हाँ
7: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
6: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे, और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा।

विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।

0: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
1: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
1: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
0: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
5: क्या बात कही है?
4: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
0: धन्यवाद।
1: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो संभल कर। अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की। जय भारत माता की। जय
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी, साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नहीं, तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जाओ। मैं जा रहा हूं।
5: साहब जी, साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर से।
3: सुबह के 9 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। राज्य में जल संरक्षण को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए 688 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। रेहड़ी पटरी वालों का कामकाज व्यवस्थित हो सकेगा। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी के दौर के बीच कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर देखा जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले आबादी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये समिति सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार के साथ दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव और डॉक्टर शमिका रवि को सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक साल में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस तरह की समिति बनाने की घोषणा की थी।
4: देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, और ये घुसपैठ ही मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा, और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के दूसरे और तीसरे चरण के लिए करीब 688 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की है। इससे जल संरक्षण और भूजल संवर्धन कामों को गति मिलेगी। जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग की निदेशक कल्पना अग्रवाल ने बताया कि अभियान के दूसरे चरण के लिए इससे पहले भी 300 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश भर में जल संरक्षण और जल ग्रहण विकास से जुड़े कामों को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। इस बीच प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत श्रमदान कार्यक्रम और अन्य जन जागरूकता गतिविधियां हो रही हैं। कल कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, बारा, पाली, हनुमानगढ़ और सवाईमाधोपुर सहित अन्य जिलों में हुए कार्यक्रमों में जल संरक्षण के लिए सामुदायिक सहभागिता का संदेश दिया गया। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। रीको और नॉन रीको औद्योगिक क्षेत्रों में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर आधुनिक तकनीक वाले जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाले प्लांट लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शेखर अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में ज्यादातर औद्योगिक इकाइयों में रिसाइक्लिंग प्रणाली की कमी है, जिससे पानी का दोबारा उपयोग सीमित हो जाता है। नई योजना के तहत लगने वाले प्लांट से जल का पुनर्उपयोग हो सकेगा। योजना की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में हाल ही में हुई प्रसूताओं की मौत के मामले में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को इसका कारण बताना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं माना गया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने

0: बताया कि कुछ मीडिया संस्थानों ने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को सीधे तौर पर मौत का कारण बताया है, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा कोई निष्कर्ष प्रमाणित नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि औषधि नियंत्रण विभाग ने विभिन्न दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के 37 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। श्री खेवसर ने बताया कि अब तक मिली रिपोर्ट्स में सभी दवाएं मानक गुणवत्ता वाली पाई गई हैं।
1: ये जो प्रसूताओं की जो डेथ हुई है वो इस इंजेक्शन के कारण नहीं हुई है, जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन नहीं था। अभी जो है इक्विपमेंट्स की जो है कोलकाता से रिपोर्ट आएगी, हमें मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर कोई कमी रही है, और उसको जब हमारे पास रिपोर्ट कुछ दिनों में आ जाएगी तो हम इसके बारे में बता पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी ये जो प्रसूताओं की डेथ हुई है उसको बहुत गंभीर तरीके से उन्होंने लिया है, और वो पर्सनली इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जांच होके जो एक्चुअल कारण है उसके बारे में हमें मालूम पड़े।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। ये जोन जवाहर नगर में बनाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने जगह चिन्हित कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। गौरतलब है कि शहर में रेहड़ी पटरी वालों को व्यवस्थित करने के लिए 27 वेंडिंग जोन चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन जोनों में बिना किसी गारंटी के आसान ऋण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इससे 5,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि योगासन को ओलंपिक खेलों में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि साल 2036 की ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावों को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की जाएगी। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी। 4 से 8 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा।
2: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा।
0: प्रचंड गर्मी के कारण प्रदेश में कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखा जा रहा है। कल 5 शहरों में दिन का पारा 45 डिग्री से ऊपर रहा। श्रीगंगानगर 47 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। उधर कोटा में रात का तापमान 32 डिग्री से ऊपर मापा गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले कई दिनों से अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है, वहीं कुछ जिलों में पारा 44 से 46 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। झुलसाने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं।
3: तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। दिन में सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दे रही है, वहीं रात के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक हीट वेव की स्थिति बने रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: मौसम विभाग के अनुसार कल से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इस बीच झुंझुनू में कल दिन भर तेज गर्मी और उमस के बाद शाम को कुछ देर तेज बारिश हुई। ईद उल अजहा का पर्व कल मनाया जाएगा। ये त्योहार कुर्बानी और त्याग का प्रतीक माना जाता है। हर साल ये पर्व इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिल हज की 10 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह और अन्य मस्जिदों में विशेष नमाज सामूहिक रूप से अदा की जाएगी। इस बीच हज यात्रा 2026 में भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के अराफात मैदान में इकट्ठा हुए। एहराम पहने अकीदतमंदों ने निमरा मस्जिद में एक साथ नमाज अदा की। जायरीन आज कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने की रस्म के लिए मीना पहुंचेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में किसी तरह का सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। बोर्ड ने कहा कि ये मार्किंग प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसंख्या

0: के परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। राज्य में जल संरक्षण को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए 688 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। रेहड़ी पटरी वालों का कामकाज व्यवस्थित हो सकेगा। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी के दौर के बीच कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

0: रॉक स्टार फिल्म से आप सुन रहे थे ए आर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाज में गाना, इरशाद कामिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको।

0: तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं नील एंड निकी फिल्म से, सोनू निगम, महालक्ष्मी अय्यर, क्लिंटन सेरिजो, डोमिनिक सेरिजो की आवाज़ों में अन्विता गुप्तन के बोल, और संगीत है सलीम सुलेमान का।

गर्मी के मौसम से तो हम सब बेहाल हैं ही, लेकिन अब लग रहा है लव का सीजन भी स्टार्ट हो रहा है। यकीन नहीं आ रहा? आ जाएगा यकीन, अगला गाना सुन लीजिए। लव ब्रेकअप्स जिंदगी फिल्म से बेनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, सलीम सुलेमान का म्यूजिक।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आती। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया।

0: आसमां को चूमे ओ हो हम जब चले तो।
1: सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही

किस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की माँ का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया।

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह,

0: सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।
1: तुमसे

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला, तुम गाने में हमको हराया, हाँ, तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता है,

0: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेंगे?
0: हाँ।
1: तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेंगे?
0: हाँ।
1: तुम तोड़ेंगे?
0: हाँ।
1: पीछे काय को झगड़ा करना जी?
0: हाँ।
1: बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
0: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो एक चौकरा एक चौकरी गार्डन में घूमता है तो फिर कबाब में हड्डी काय को?
0: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: बोला आगे नहीं आना।
0: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
0: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
0: आएगा।
1: तुम आएगा?
0: आएगा।
1: अच्छा तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
0: अबे तुम कैसे पीछे जाते हो? ये कसरत का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार।
1: यो यो यो यो यो। अयो अयो।
2: सन 1965 फिल्म

सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल राय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन रही है।

0: एक दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थी। तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।
1: खामोशियां

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई थी।

सन 1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की यह फिल्म है रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा। सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए। सन 1976 नागिन। सन 1979 जानी दुश्मन। और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया, रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थी। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की मां नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए।

0: हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
1: एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हीरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS, ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे। सुनील दत्त को हमारा विनम्र नमन।

0: दिए।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जो मेहनत से देश सजाए, ESIC हर कदम पर साथ निभाए। सुख हो या संकट की घड़ी, ESIC साथ है हर घड़ी।
3: 1952 से आज तक ESIC बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी। हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
2: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
3: ESIC 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।
4: चिंता से मुक्ति।
5: आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। आप सुनते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
6: ओ माय गॉड, बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जानी माने बांसुरी वादक पारसनाथ। ये है पारसनाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: क्या बात है बांसुरी की इस मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती, हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है
0: जी।
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूजिक एज ए म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया के यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के

0: आकाशवाणी का वो जो खुशबू है और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक वो जो है, एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
1: क्या
0: सो
1: बात,
0: थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट
1: अपने
0: फील।
1: ही परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से,
0: बिल्कुल कह सकते हैं इट्स अ होम कमिंग
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बैक।
1: यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी
0: पंडित
1: गायक पंडित अमरनाथ जी से
0: जी नहीं,
1: अलग
0: अलग
1: है।
0: हैं, बांसुरी वादक
1: जी बिल्कुल,
0: पंडित
1: बांसुरी
0: अमरनाथ
1: वादक
0: जी,
1: पंडित
0: बांसुरी
1: अमरनाथ
0: वादक
1: जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी
0: जी
1: से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: जी जी पिताजी ने तकरीबन 61 या 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की,
1: क्या बात है,
0: और जो प्योर जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज़्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं जैसे बिलास खानी तोड़ी। अब बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है,
1: जी
0: और गोरख कल्याण ये सब राग संभालने ही मुश्किल हैं, मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफ़ी है।
1: और इन
0: उन
1: रागों में
0: पे
1: वाद्य वृंद
0: वाद्य
1: बनाना
0: वृंद बनाना, वो भी
1: और
0: उनके
1: भी बड़ा
0: चलन के
1: काम।
0: आधार पे।
1: जी
0: अब सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
1: 80 लोग,
0: हाँ
1: ये मायने रखता
0: अस्सी
1: है।
0: आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
1: नगीने
0: नगीने हैं जो अपने अपने अपने वाद्य के अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए जिनको जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पा धा नी सा और SRGM सारे गामा
1: अच्छा,
0: पा
1: दोनों
0: धा
1: नोटेशन कर देते वो।
0: पिताजी करते थे। हाँ सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे, वो हिंदी नोटेशन लिखते थे बट उसको SRGM में लिखते थे।
1: जी,
0: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे 3 भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूज़िक में नहीं हैं, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम 3 भाई हैं और 2 म्यूज़िक में हैं, 1 म्यूज़िक में नहीं है।
1: जी
0: तो मैं और पंकज नाथ जी हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे। तो वहाँ से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई इंडस्ट्री में
1: बुनियाद पक्की हुई।
0: बुनियाद पक्की हुई एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
1: जी,
0: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
1: मैं ये देख पा रहा हूं कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी।
0: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन
1: तो
0: ऐसा होता है ना
1: हाँ।
0: कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
1: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद तो
0: हाँ
1: जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है, वो एक कुटुंबस।
0: अभी आर्टिस्ट है,
1: हाँ
0: और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो तो
1: जी,
0: और भी बदमाश
1: और भी।
0: होता
1: तो आप क्या कारनामे करते थे।
0: है। हम लोग करते थे बचपन में।
1: शर्मारे बता रहे थे।
0: हाँ थोड़ा सा शर्मार हो गया बट हाँ बदमाशी करते थे।
1: बगीचों से आम चुराए, चोरी से
0: बहुत
1: फिल्में
0: चुराए,
1: देखी है।
0: बहुत चुराए हमने, आम चुराए हैं, और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है, प्रिंसिपल
1: ओ हो
0: को भी थोड़ा परेशान किया है।
1: थोड़ा
0: हाँ। इतना थोड़ा कि उन्होंने
1: घर शिकायत भेज दी।
0: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था।
1: अरे बाप रे। फिर
0: फिर पिताजी आए, उन्होंने, अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
1: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा। कुछ तो
0: आपने
1: खतरनाक
0: पकड़
1: वाला किया
0: लिया,
1: होगा।
0: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों, रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
1: जी,
0: मैं बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे, तो टीचर ने।
1: अच्छा।
0: इसको कर्मा बोलते।
1: वापस आ गया।
0: मुझे लगता है कोई

0: कोई टीचर आया आपके रूम में।
1: हाँ, तो बदमाशी की है सर।
2: हाँ
1: हाँ, कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
2: जी।
1: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
2: अच्छा।
1: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉयज स्कूल में था, सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे,
2: जी,
1: बहुत स्ट्रिक्ट थे,
2: और जमाना भी सख्ती का था।
1: बहुत ज़्यादा था। और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज़्यादा। उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल, कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुँचे नहीं
2: कहीं और पहुंच
1: तो ऐसी बदमाशियाँ रहीं। फिर खेलने चले गए,
2: गए जी।
1: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियाँ की हैं बचपन में। और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
2: तो क्या
1: तो
2: हाल
1: बाप
2: होता
1: रे, दुनिया अलग और मैं अलग।
2: कितना सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
1: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड नहीं था,
2: जी
1: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है। मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ।
2: जी, ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
1: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
2: जी
1: अनुशासन में रहने का। जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
2: क्या प्यारी बात बोली है जी।

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीज़ें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीज़ें मैंने तब रियलाइज़ की कि कुछ चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4-4:30 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ बड़ा हमें लाड प्यार मिला है। मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है।
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए, उनकी एज थी 104 साल।
1: ओहो हो, गजब।
0: ही वाज अ मिलिट्री गाय।
1: जी जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली,
0: वो पार्ट थे उसके।
1: ओके।
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के, और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको स्निच हुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, हिज सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे?
0: शहनाई छोड़ी नहीं उन्होंने, रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने
1: फौज में होते हुए।
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: शहनाई, और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी।
1: त्रिपुरा बांसुरी
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में।
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ होल के पास।
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से।
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं।
1: जी।
0: और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है
1: नॉर्मल
0: वो वैसे ही बजाते हैं।
1: जी जी,
0: पंचम हम होल यूज नहीं करते। तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी है।
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: बांसुरी, उनका आशीर्वाद है।
1: जी,
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। 4 बजे हम तीनों को उठाते थे वो, हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है। और उस मुहूर्त में जो राग है, रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है। ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था।
1: जी जी,
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुर से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह।
0: तो सा सा सा रे गा मा पा दा नी सा नी ला बा मा गा रे सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के, जा

0: वाह वाह वाह वाह,
1: मोहन प्यारे जागो। तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है। क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना,
0: बिल्कुल
1: और
0: बचपन
1: वो
0: की नींद,
1: चार साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
0: बिल्कुल
1: उस वक्त जगा दिया जाता था। दिल्ली, आई बॉर्न बॉटम इन दिल्ली,
0: जी,
1: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
0: खतरनाक जी।
1: पर वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम, वॉट एवर। ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ।
0: जी,
1: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया, 7:30 8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए।

0: चार बजे सुबह क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है? क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: बचपन
0: वो
1: की
0: चार
1: नींद,
0: साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
1: बिल्कुल
0: उस वक्त जगा दिया जाता था। दिल्ली, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली,
1: जी,
0: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
1: खतरनाक जी।
0: पर वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम, वट एवर। ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड की बात बता रहा
1: जी
0: हूँ।
1: जी
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया। 7:30 8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए। 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके, उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी, तो ये बांसुरी बजाते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे।
1: अरे गजब।

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। सो हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4:30-5 बजे से वापस रियाज। वो रात को चलता था 10-10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11-12-13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में। तो वो माहौल वैसा था।
1: वाह वाह।
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके दिन भर, आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा।
1: और बच्चे तो सो रहे हैं।
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक।
1: ओहो हो, तो सारी रात जागना है।
0: पूरी सारी रात जाग गए।
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है।
0: सुबह का शेड्यूल तय है। पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, दोस्त सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी। तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज अनुशासन करते से, हुए
0: रियाज करते हुए अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या
0: पर
1: बात है।
0: मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड महसूस करूँ यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया
1: जी,
0: संगीत दिया जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी बनी
1: जी,
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी और फिर संगीत सिखाया और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी
1: जी,
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है। और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल।
0: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल,
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग।

0: है।
1: बिल्कुल,
0: ये और मैं एक ही हैं। सो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ और एक सास की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के सास की सेवा कर रहा हूँ, जिन्होंने इस सास से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
1: क्या बात है पारस जी, हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी
0: जी,
1: उस पर कोई धुन बजाएं और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद
0: जी,
1: का।
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूँ
1: जी,
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरा लाइफ का
1: जी,
0: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी
1: जी जी,
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे
1: जी जी जी,
0: देखो ऐसे बजाते हैं,
1: समझ गया।
0: देखिए तो एक होती है सीधी बांसुरी,
1: हाँ,
0: आपने देखी होगी ऐसे शहनाई की तरह बजाते हैं
1: जी जी जी,
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी
1: जी,
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं, तो मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी
1: हमेशा
0: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी,
1: हाँ
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं
1: जी।
0: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे, इसका ये पंचम का होल है
1: जी,
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
1: उस तरीके,
0: उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए इसमें जो कृष्णा बांसुरी है, इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपनी नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीज़ें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना ग्रीडीनेस
1: जी जी
0: इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते लोग
1: जी।
0: आप सोचिए ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ
1: जी, बिल्कुल
0: इसमें दो चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूँ,
1: हाँ बिल्कुल,
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का
1: है, हाँ, बिल्कुल है
0: ठीक है
1: आखिर में
0: ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है,
0: हमने तो बचपन से देखा है
1: जी,
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है, तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए,
1: आप माध्यम है,
0: आप अपने आप को मत मत समझिए कि आप भगवान है
1: जी,
0: आप भगवान नहीं है, आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले, जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही,
0: तो हमने तो बचपन से देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, जो भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी में बजा नहीं पाता,
1: कोई बात नहीं, तो आप
0: इसका साउंड क्रिएट नहीं कर पाता
1: जी, तो आप अपनी कृष्णा बांसुरी बजाइए।
0: मैं लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर मेरे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है,
1: वाह
0: हमेशा,
1: क्या प्यारी बात,
0: ये मेरे फ्लूट किट में रहता है
1: जी जी जी।
0: अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, जो तीव्र माँ का ये है
1: जी,
0: अब ये बांसुरी पे तीव्र मा का यहाँ होल है,
1: हाँ
0: है ना
1: जी,
0: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का
1: जी जी जी,
0: पिताजी का भी ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे, वो टेक्निकली वो उस चीज को समझ ही नहीं पाए। अब हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका, अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, शिष्य भी हैं, अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं, समझ में नहीं आता है।
1: तो वो, बिल्कुल सही,
0: वो
1: है।
0: देखना पड़ता है
1: जी।
0: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में,
1: हाँ हाँ।
0: दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता हूँ,
1: ठीक है, और उसके बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते हैं,
0: मैं फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
1: जी।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए।
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटि कोटि प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: SD बर्मन साहब ने।
1: वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी।
1: जी जी जी।
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने।
1: अच्छा।
0: बहुत ही छोटी सी। अब जैसे ये चल रहा है

0: नहीं। एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ, जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना
0: जी,
1: कोई सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी
0: जी।
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है,
0: खाता शिशु
1: रहता
0: होता है, जब
1: शिशु
0: वो
1: होता है वो, तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है
0: जी,
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी, मेरे दादाजी के साथ मैं गया था, और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
0: बाप रे, इतनी कम उम्र में परफॉर्मेंस।
1: हाँ, वही राग दुर्गा ही बजाया था मैंने। उस वक्त क्या था, वो 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं। तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया, तो उस वक्त ऐसा, अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया
0: जी जी जी,
1: उस वक्त वैसा नहीं था, तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ,
0: वो उम्र भी बहुत छोटी थी।
1: हाँ, काफी छोटी थी। फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने, दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ,
0: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक। गजब।
1: वो ये आशीर्वाद है
0: जी जी जी।
1: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या करते हैं। सवाल
0: पीने जाई
1: जी,
0: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
1: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
0: जी
1: उस वक्त। म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
0: जी
1: काम करने लग गया था, तो फिल्म से उतना था, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से मतलब सुनने में और करने। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं हमें रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं, मेरी माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे, मेरी माताजी और दादी जी, वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक पारे, गुजिया, घर की मिठाई, तो पहले बाहर से नहीं आता था मेरे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हालांकि हमारे घर में तो तब त्योहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज्यादातर,
0: और वो ठेठ बनारसी,
1: ठेठ बनारसी। तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे, और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो।
0: गजब।
1: हाँ, तो उस वक्त रेडियो चलता था, उस वक्त रेडियो चलता, तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफ़ी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं। तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक बलमा
0: जी जी,
1: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता।
0: हाँ हाँ, चोरी चोरी फिल्म का।
1: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना
0: जी,
1: तब का सुना हुआ है।
0: गजब।
1: तो वो जहन में, वो भी मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है, और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूं, कॉरपोरेट इवेंट्स भी करता हूं, वहां बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना है। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है, एक वो
0: होली आई रे कन्हाई।
1: हाँ, अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था
0: जी,
1: तो वैसा था, तो फिर ऐ दिले नादान,
0: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान।
1: हाँ, रजिया सुल्तान, तो कितना कमाल गाना है वो।
0: बिल्कुल।
1: ओ हो हो, तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर, फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम
0: जी,
1: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन,
0: अरे बाबा,
1: और गुजुटी से नहीं, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त थी। फिर ज़्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स, प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम लोग, हम

0: को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक,
1: अच्छा
0: बहुत शौक,
1: क्या बात है,
0: एंड आई वाज द बेस्ट प्लेयर,
1: अरे वाह,
0: इन द टीम, यस।
1: तो आप बॉलर थे या आप?
0: मैं बॉलर ज्यादा बेहतर था, ऑलराउंडर ही था ज्यादातर, बट ज्यादा बॉलर वाला काम था मेरा।
1: क्या बात है,
0: था।
1: तो फास्ट बॉलर थे?
0: फास्ट बॉलर, लाइक शोएब अख्तर।
1: वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव, क्या बात है। तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है?
0: अब तो सर सर बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ
1: जी। लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
0: विरोध ये था कि जब खेल के थे ना, वो मैं बता रहा हूँ ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में।
1: खेल रहे हैं तो फिर बस,
0: फिर खेल रहे हैं तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं,
1: डरते डरते।
0: हाँ, कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ, मोबाइल भी नहीं था तब तो।
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: कोई मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जगह है कहाँ।
1: हाँ,
0: तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले ही गए,
1: जुनून के तहत खेल।
0: हाँ, वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी। और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
1: जैसे
0: फॉर एग्जाम्पल वाई ब्लॉक का एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है, उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वैसा रहता था, दिन भर चला जाता था उस जुनून में। फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है, पर घर वाले
1: ये भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती होगी।
0: हाँ, महंगी पड़ती थी।
1: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
0: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही
1: इशारा किया था
0: कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे।
1: अच्छा। ये कोर्स से बाहर का सवाल है,
0: पर आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर वापस
1: ले आए।
0: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हो, पता नहीं क्यों।
1: नहीं, स्कूल से बाहर आ जाते हैं।
0: हाँ, स्टूडियो चलते ना,
1: स्टूडियो चलते,
0: मजा आता है।
1: आकाशवाणी के गलियारों से जुड़ी यादें बताइए। पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे, तो
0: वहाँ पे
1: उनके
0: क्या
1: साथ जाते होंगे आप स्टूडियो?
0: जी, हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने, और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक, जब हम उनके साथ जाते थे तो वो पेंशन के लिए जाते थे
1: जी,
0: दादाजी
1: जी।
0: अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त, तो उनके साथ जाने का एक अलग मजा था, वो एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज्यादातर। दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था उनके साथ पूरा। अभी जो मैंने तानपुरा चलाया
1: जी जी,
0: उसमें पेटी वाली सुरपेटी आती थी, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी है। तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी राग का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज़्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें। अब सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो उस वक्त क्या होता था सर कि हम जब जाते थे पिताजी के साथ तो वहाँ जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे, उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मजा तो आता था वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीजें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीजें समझ आती थी। बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी
1: जी।
0: और ये सब तो दुनियादारी की चीजें, ये आप घर भी नहीं सीख सकते।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं,
0: ये आपको घर से चौखट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसेयर थे, और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सबका ख्याल रखना। और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर में, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब

0: आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो
1: जी।
0: तो पूरे एक हमारा चक्कर
1: लगता है।
0: तो वहां फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो जो वहाँ पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं, इतने प्यारे हैं, तो इनको एक तरीका बता दो। और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होके और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपनी अपनी चीज़ें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए। तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं। तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का।
1: क्या
0: तो वो एक बड़ा, शाम को फिर एक अलग माहौल होता था कि जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहाँ पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्जाम ही नहीं होता था वो, कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है,
1: हाँ
0: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए।
1: बिल्कुल।
0: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज्यादा फीलिंग से ज्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए गलत ना हो जाए,
1: इतने सारे लोगों
0: के बीच में। तो उनकी वो एनर्जी और वो इम्प्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति, सब बैठे हैं एक रूम में तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं, तो एक घबराहट रहती थी। तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज्यादा।
1: गजब, यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत था।
0: वही था।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: के कार्यक्रम आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। सवेरे के 11 बजे हैं, सुनते हैं ये संदेश।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।

0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
1: जो मेहनत से देश सजाए, ESIC हर कदम पर साथ निभाए। सुख हो या संकट की घड़ी, ESIC साथ है हर घड़ी।
2: 1952 से आज तक ESIC बना है भारत के मेहनतकशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी। हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
1: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
2: ESIC 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।
3: चिंता से मुक्ति।
4: आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। आप सुनते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

हम सुन रहे थे आबसार एल्बम से यह गज़ल, जिसे गाया महिमा ने, सरदार अंजुम ने इसे लिखा और सोमदत्त बट्टू ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला नगमा, जो कि है हिंदुस्तान क्लासिकल गज़ल एल्बम से, तलत महमूद की आवाज़ है, हसरत त्रिमिजी ने इसे लिखा है और चित्ता रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हे धन्य जवानों अपने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज़ में गालिब के बोल और फैयाज शौकत के संगीत के साथ ये खूबसूरत सा नगमा।

नॉन फिल्मी गीत एंड गज़ल एल्बम से हम सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज़ में, मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजा हुआ और मन्ना डे के ही संगीत से सजे हुए इस नज़्म को। आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा, जो कि है ये मिलन ख्वाब सा, इस एल्बम से तलत अज़ीज़ की आवाज़ में। सरदार अंजुम ने इसे लिखा और तलत अज़ीज़ ने इसे संगीतबद्ध किया।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुन रहे थे ये नगमा, जिसे सबा अफगानी ने लिखा, इकबाल ने संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उषा टंडन की आवाज़ में दाग के द्वारा लिखे इस नगमे को।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एल्बम गजल से एक गजल जो गाई है प्रतिभा सिंह बघेल ने। कमलेश सोनावाला ने इसे लिखा, राजू राव, प्रमिला राव ने इसे संगीतबद्ध किया।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दानिश के बोलों के साथ इकबाल के संगीत के साथ सुन रहे थे हिंदुस्तानी गज़ल एल्बम से ये नज़्म को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अंतिम नज़्म।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

0: सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमरीका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50-27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में। हर प्रतिदिन हम सजाकर लाते हैं यादों की महफिल किसी एक खूबसूरत सी याद के साथ। तो आइए सुनते हैं आज के यादों की महफिल कार्यक्रम के इस खूबसूरत से नगमे को,

हम सुन रहे थे छोटी सी बात फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ और योगेश के बोलों से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा। आज हम सुनवा रहे हैं गीतकार योगेश की कलम से निकले हुए गीतों को।

हम सुन रहे थे ये गीत आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज में, योगेश के बोल सलिल चौधरी के संगीत के साथ। अग्नि परीक्षा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ सुनते हैं गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। दिन के ठीक 12:15 बजे हैं। सुनते हैं ये चंद संदेश।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जो मेहनत से देश सजाए, ESIC हर कदम पर साथ निभाए, सुख हो या संकट की घड़ी, ESIC साथ है हर घड़ी।
2: 1952 से आज तक ESIC बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी, हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
1: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
2: ESIC 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।

हम सुन रहे थे अग्नि परीक्षा फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में योगेश के बोल और सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में अधूरा आदमी फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, योगेश के बोल हैं, राहुल देवर्मन का है संगीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे।

0: ये सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: धन जवान।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई।
1: चांद की बिना तेरे सुने ही बात हो गई।

0: हम सुन रहे थे रजनीकंदा फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में योगेश के बोलों के साथ सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे मंजिल फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में योगेश के बोल और आरडी वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हमने यादें सजाई हैं योगेश की कलम से निकले हुए गीतों के साथ। अगला गीत हम सुनने वाले हैं किसी से ना कहना फिल्म से। आशा भोसले की आवाज़ है, योगेश के बोल हैं, बप्पी लहरी का है संगीत।

हम सुन रहे थे अपने पराए फिल्म से यशुदास आशा भोसले की आवाज़ में योगेश के बोलों को, जिसे बप्पी लहरी ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, योगेश के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत है, फिल्म है चालबाज।

0: आप सुन रहे हैं विवेक
1: आकाशवाणी के जयपुर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को संवैधानिक और वैध बताया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसे निष्पक्ष और शुद्ध मतदाता सूची तय करने का अधिकार है। एसआईआर प्रक्रिया से ही स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया के साथ मतदाता सूचियों की सत्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उप मुख्यमंत्री तथा उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा भी समारोह में मौजूद है। विश्वविद्यालय की कुलगुरु निष्ठा जसवाल ने बताया कि समारोह में 9 स्वर्ण पदक सहित 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां वितरित की जा रही हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आज जोधपुर में बीज उत्पादक कंपनियों और फैक्ट्रियों पर औचक छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने बड़ी मात्रा में अमानक

0: बीज जब्त करवाए। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि घटिया बीजों से किसानों और निर्यात प्रक्रिया को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बरामद किए गए बीजों की जेनेटिक शुद्धता जांचने के लिए ग्रो आउट टेस्ट GOT करवाया जाएगा। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक सीबीआई 13 आरोपियों को पकड़ चुकी है। वहीं 49 जगहों पर ली गई तलाशी में कई दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। गौरतलब है कि 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा 21 जून को फिर से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे खुद को हाइड्रेटेड रखें और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने संवेदनशीलता बरतते हुए लोगों को पानी पिलाने का पुण्य कार्य करने का आग्रह किया है। साथ ही जानवरों और पक्षियों का ध्यान रखते हुए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी का बर्तन रखने को कहा है। राज्य में जारी प्रचंड गर्मी के दौर के बीच आज राज्य के 5 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। बीकानेर और कोटा संभाग तथा शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 46 डिग्री से ऊपर दर्ज होने की संभावना है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में आज और कल दिन का पारा 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। दिन के समय तेज तपिश के साथ लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल रही है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। इस बीच नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से झुंझुनू और सीकर में मौसम बदला। कल दिन भर तेज गर्मी और उमस के बाद हल्की बरसात हुई। झुंझुनू के नवलगढ़ में ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने कल से 30 मई तक राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर ही सिमट गई। रजत पाटीदार को नाबाद 93 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव और एफएम पर। आइए अब सुनते हैं एक बार फिर से फिल्मी गाने।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, सचिन देवर्मन के संगीत से सजा हुआ। हमने पूछा था कि इसके गीतकार कौन है और आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मजरूह सुल्तानपुरी। और बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि आप बताइए कि कौन सा शब्द है जो उसका उल्टा है, लेकिन अर्थ भी अलग है लेकिन साथ में मिल जाता है। जैसे हमारे श्रोता ने लिखा कि इबारत से ही शब्द ताल लता, ताल मिलते ही लता गा उठती है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है सीमा मासी, यानी सीमा नाम की मासी जिसकी होगी वो सीमा मासी बड़े आराम से हो जाती है। खीरा राखी, धारा राधा, दाग गदा, मीना नामी, बहुत सारे शब्द इन्होंने हमें दिए हैं। और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे और शब्दों के बारे में हमें बताया है। जैसे उन्होंने लिखा है कि एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा शब्द दिया, राधा धारा, तो जो धारा के साथ बह उठे वही तो राधा का हो जाएगा। इसे हम धार्मिक परिवेश में ले जाकर इस तरह से समझ भी सकते हैं। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया कि आपने चलती का नाम गाड़ी फिल्म का यह गीत, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी है, बिल्कुल सही। भला का उल्टा लाभ, बिल्कुल सही है। हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भी लाभ होगा। शादी दिशा, तो शादी जो होती है वो सही दिशा में हो तो कितना अच्छा है। नवीन नवीन दोनों तरफ एक जैसा होता है। और हमारे श्रोता ने लिखा मरा राम, तो इसके लिए हम बचपन में कहा करते थे जब तक मरोगे नहीं तब तक राम के कैसे होगे, तो राम का होने के लिए भी हमें उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। ऐसे कई सारे शब्द आपकी तरफ से आ रहे हैं और अगर आते रहते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है कि किसी को अपने सफ़र में शामिल करने के पहले यह समझना चाहिए कि उसका नज़रिया क्या है। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी चिंताओं को सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनकी कद्र करते हैं, तो गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। अपने विश्वास को इस तरह से पेश करें कि सामने वाला उसमें अपना भी कोई सपना भलाई नज़र आए। जब व्यक्तिगत उद्देश्य एक बड़े साझा उद्देश्य के लिए जुड़ जाते हैं तो कारवां अपने आप

बनता जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। एक और लिखते हैं, हमारा विश्वास है कि हमें सब कुछ दिला सकता है, फिर भी हमारे जीवन में राह सुकून भरी हो जाती है। जैसे नदी के किनारे सुकून मिलता है, इसी दौरान कदम दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमारे जीवन के दिन बड़े हो जाते हैं और किसी की मुस्कुराहट की वजह भी बन जाते हैं। अच्छा, आपने हमारी इबारत को ही घुमा दिया। हमारे श्रोता लिखते हैं, जीवन को खुशहाल और सार्थक बनाने के लिए छोटी छोटी खुशियाँ और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अक्सर हम बड़ी सफलताओं की खुशी तलाशते हैं, लेकिन असल में दैनिक जीवन के छोटे छोटे पल ही मानसिक शांति और सकारात्मकता का आधार बनते हैं। इसीलिए हर दिन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही एक सच्चे और खुशहाल जीवन का रहस्य है। सच बात है, छोटी छोटी खुशियाँ बड़े जीवन की बड़ी प्यारी सी खुशियां बन जाती हैं। तो चलिए, हम अगला गीत आपको दे रहे हैं। ऐसे ही जो शब्द है ना, एक दूसरे से उल्टे पलटे पर मिलते जुलते या कहीं ना कहीं जुड़ते जुड़ते, अगर कोई शब्द आपको आता है तो आप ज़रूर हमें भेजिए और साथ में सुनिए ये गीत। अब फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस गीत के गीतकार कौन है? बहुत खूबसूरत गीत है, सुनिए।

कि कई सारे शब्दों के बारे में बताया, जैसे पापा, दादा, नानी, मम्मी की नानी और नानी की मम्मी ये रिश्ते बदलने से पात्र बदलते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे एक श्रोता लिखते हैं मधु धूम, कितनी बढ़िया है। हमारे श्रोता लिखते हैं मैं राधा का नाम जपूं जमुना धारा में, कितना बढ़िया है ना, मैं राधा का नाम जपूं जमुना की धारा में, मुझे भी बड़ा मजा आया पढ़कर। ये सीधा पढ़ो या उल्टा राधे राधे जी, बिल्कुल। एक ने लिखा है तेजू के पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया तेजू के पापा और पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा करेंगे तो एक जैसा हो जाता है। कनक, एक बचपन में पढ़ा करते थे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या काए बौरात नर वा पाए बौराए, इसी बात को लिखकर उन्होंने बताया है कि कनक के लिए उन्होंने अर्थ बताया कि एक कनक सोना है और दूसरा कनक आटा भी होता है, तो इसे भी हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया हरा राह हवा वाह सखा खास, ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे सखा हमारे लिए खास होते हैं। टोपी पीटो दिखा खादी, खादी दिखाइए के लिए दिखा खादी, नाम मना, और इसके साथ ही लीला लाली, लीला करने से ही लाली आती है। ऐसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारे शब्द भेजे हैं, आप भी भेजते जाइए। अब जो अगला गीत है मैं आपको सौंपूंगी, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा लिखा है कि थोड़ी सी खुशियाँ, विश्वास और मुस्कुराहट के सहारे ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ता रहता है। जैसे नदियाँ अपनी धारा के साथ निरंतर चलती हैं, वैसे ही पल भर नहीं रुकती। दूसरों के कदम के लिए अगर सबके कदम दूसरों की मदद के लिए उठें तो दिन और खूबसूरत बन जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ और लिखी है कि थोड़ी सी खुशियाँ, दूसरों की मदद और मुस्कुराहट बांटते हुए जीवन का सफ़र चलते रहने का विश्वास, यही तो है सुरीला सफ़र की असली मिठास। जी बिल्कुल, और इस मिठास के साथ हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक गंभीर सा सवाल, ये जो आप उल्टा सीधा लिख रहे हैं वो ज़रूर लिखते जाइए, पर उसके साथ एक सवाल और है, आपके माता पिता ने कोई ना कोई ऐसी सीख दी होगी जो आज भी आपके कानों में गूंजती है, जरा सोचिएगा, है ना, जरा इस सीख को याद कीजिए। जैसे मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा हमारा हाथ हमेशा ऊपर देने हो रहना चाहिए, जैसे देने वाले का होता है, प्रयास करो, सदा दूसरों को देते रहो। ऐसा ही कुछ आपके माता पिता ने भी आपसे कहा होगा जो आपके कान में आज भी गूंजता है, उस विषय को याद कीजिए। और चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस बहुत सामान्य सा सवाल है, इस गीत के गायक कौन है।

हम सुन रहे थे खट्टा मीठा फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में। राजेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आपने बताया कि गुलजार ने इस गीत को लिखा है और कई लोगों ने कहा कि कितना सच्चा गीत है ना ये, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है ज़िंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा बड़ा प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे और इस गीत के साथ में हमारे श्रोताओं ने लिखा

ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे अनोखी रात फिल्म से। और इस गीत को लिखा इंदिवर ने, रोशन ने संगीतबद्ध किया, और हमने आपसे पूछा था कि गाया किसने, तो आपने कहा बहुत खूबसूरत सी आवाज़।

ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे अनोखी रात फिल्म से। और इस गीत को लिखा इंदिवर ने, रोशन ने संगीतबद्ध किया, और हमने आपसे पूछा था कि गाया किसने, तो आपने कहा बहुत खूबसूरत सी आवाज़ मुकेश की है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और हम आपसे बात कर रहे थे दो विषयों पर। एक विषय तो ये चल रहा है कि कोई भी शब्द जो उल्टा सीधा एक सा होता है वो बताइए, साथ में दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी सीख है जो आपके माता पिता ने आपको दी है। हम वह सीखें आज यहाँ से पढ़ेंगे ताकि सारी माता पिता की सीखें हम सबके पास में आ जाएंगी। हमारे एक श्रोता ने उस विषय पर लिखा है जहाँ पर शब्द उल्टे सीधे होते हैं, चौबे जी भाजी बेचो जी, बिल्कुल ये बिल्कुल उल्टा सीधा एक जैसा हो जाता है। राधा की बुनी में नींबू की धारा, बिल्कुल ये भी हो सकता है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है हार रहा, और इसके साथ ही राज जरा धूम मधु, इसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं दादी बोली धूम मत मचाओ तो मधु मिलेगा। बिल्कुल सही। नवजीवन नवीन, अगर शब्द को उल्टा सीधा करते हैं तो वो एक जैसा हो जाता है। मज़ा आ रहा होगा शायद बचपन के इस खेल को खेलकर, और उसी बचपन में हम वापस चलते हैं। हमारी सीखों के लिए कितना अच्छा होगा अगर हम सारी सीखें याद कर लें तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। हमारे श्रोता लिखते हैं मेरे पिताजी की दी हुई सीख की जीवन में आगे बढ़ने के लिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, क्योंकि रुकने पर जिंदगी बोझ लगने लगती है। क्या बढ़िया बात कही आपके पिताजी ने। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे मम्मी पापा अक्सर कहा करते थे कि अगर आसमान को छूना चाहते तो हमेशा धरती के हर प्राणी से प्यार करो और सबसे प्रेम से बात करो। क्या बढ़िया बात कही। और हमारे श्रोता ने हमारे उस गीत के लिए कहा है कि जो अनोखी रात फिल्म का ये गीत है उसमें जो आलाप है वो हेमंत कुमार जैसा लगता है। अब इस बात की जानकारी हमें नहीं है, शायद आपको हो। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा ने बहुत प्यारी सीख दी है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो तो सदा सुखी रहोगे। इस सीख को हम सदा याद रखते हैं और ज़्यादा की चाहत नहीं करते। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन में धैर्य ज़रूरी है, इसे हमेशा बनाए रखना, ऐसा पापा कहते थे। मैं कोशिश करती हूँ और कभी धैर्य और धीरज खो ना दूँ, इस बात का ख्याल रखते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं हमें बोला गया था चाहे ज़्यादा हो या बहुत कम मदद करो, पर लेने वाले की आँख में मत देखो क्योंकि उसकी लाफे नींद छीन लेगी। कितनी बढ़िया बात सिखाई है, देते समय उसकी नज़र में मत देखो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे पापा ने कहा है कि दूसरों की मदद करते जाओ, कोई मदद करे या ना करे, बस भगवान है ना बस। और मम्मी कहती हैं जो साथ मिलकर रहने में खुशी है वो खुशी कहीं और नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, और इसी बात को हमने एक आपके सामने कनक कनक ते सौ गुने पढ़ा था, तो हमारी एक हिंदी की शिक्षिका यानी हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी में यमक अलंकार का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। इसमें कनक दो बार आया है, पहले कनक का अर्थ है धतूरा अर्थात जहर, दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण धातु। बिल्कुल सही बात है। और चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखकर हमें भेजी थी कि एक बात तो सच है कि लोग क्या कहेंगे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और डर को छोड़कर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग इस डर से अपनी खुशियां खो देते हैं, और विचार सिखाता है कि दूसरों की भलाई और अपनी खुशी के आगे फिजूल की बातों को भूल जाना चाहिए। बिल्कुल भूल जाना चाहिए। और जो मैंने आपसे दो प्रश्न रखे हैं उन दो प्रश्नों के उत्तर देते जाइए कि आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया, माँ ने सिखाया या पिता ने सिखाया, किसी ने तो कोई सीख दी होगी, उसे ज़रूर बताइए। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, बताइएगा इसके संगीतकार कौन हैं।

हम सुन रहे थे सफ़र फिल्म का यह गीत मन्ना डे की आवाज़ में, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, ये कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और बहुत खूबसूरत संगीत है, बहुत प्यारा माटी से जुड़ा गीत है। अब हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं अपने माता पिता के बारे में, और वह एक और हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है कि नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज है समय की धारा। जी बहुत प्यारे बोल हैं, बहुत प्यारा लिखा है इंदिवर ने इस गीत को। और हमारे श्रोता थोड़ी सी शिकायत कर रहे हैं कि बार बार ये गीत सुनाया जा रहा है, क्षमा चाहेंगे, अगली बार प्रयास करेंगे कि नए गीतों को लेकर आपके बीच आएं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, वैसा कोई और प्रेम नहीं होता। माता पिता के प्यार से समझाने के लिए आपको स्वयं बच्चों का पालन पोषण करना होगा। बच्चे अपने माता पिता से मुस्कुराना सीखते हैं। मेरे हीरो मेरे माता पिता हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने, बड़ा आनंद आया इस बात को पढ़ने के बाद में हमें। और इसके साथ ही हमारे सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आप सब बहुत अच्छे से जुड़कर बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भेजते हैं, उसके लिए भी हम सबकी तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते जाते हैं। और इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि हाथ एक दान से करो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। किसी को कुछ दो ना दो, पर दो शब्द एक प्यार भरी मुस्कान दे दो। किसी को अगर किसी का कुछ काम करो तो ये भावना ना हो कि वक्त पड़ने पर वह हमारे लिए काम आएगा, बल्कि ऐसा कहो कि किसी का बुरा वक्त आए ही ना। कितनी बढ़िया सीख आपको मिली है आपके जीवन में आपके गुरु के हाथों से। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि विदी जी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई हमारे घर आता है और जब वह जाने लगी तो दरवाजे तक उसके साथ जाकर उसे विदा करूं, जिसे मैं आज तक निभा रही हूं। जी

कल होता है कि कोई निकलता है और हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, पर पहले ऐसा था कि जब तक वह दिखना बंद ना हो जाए तब तक हम उसे विदा करते थे। कितनी अच्छी बात थी ना। इसके साथ हमारे श्रोता कहते हैं कि मेरी माता ने मुझसे कहा था कि किसी मजदूर का एक पैसा भी मत रखो, हो सके तो ज़्यादा दे देना। मैं इस बात को आज तक अमल में लाता हूँ, कभी किसी मजदूर या श्रमिक का कोई पैसा नहीं रखता हूँ। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वे कभी अलग ना हो पाए, ऐसा ही रहे। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, किसी की हाय मत लो, यह सिखाया गया है इनके पिताजी के द्वारा। हमेशा हमारे पापा तो हमेशा कहते थे, एक समय के पाबंद रहो, तरक्की उन्नति सदैव करोगे। बिल्कुल सही बात। एक और पिताजी कहा करते थे, किसी से मत डरो, जो डर गया समझो मर गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात कहते थे, डरना तो बहुत गलत चीज़ है शायद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि उनके जो जीवन में सीख है माता पिता के संस्कारों से टिकी है। उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, तुम्हारे शब्दों में किसी का रूह आना आहत हो, मेरी आत्मा में बसी है ये बात। वहीं पिता का अडिग मंत्र, व्यापार हो या जीवन, ईमानदारी ही एकमात्र धर्म है, मेरी राह का दीपक। आज जो भी हूँ इन दो पवित्र विरासतों की बदौलत हूँ, इन्हीं के प्रकाश से अपना जीवन जी रहे हूँ। बहुत सही बात कही है। पिताजी ने कहा था, बेटी किसी की बात पर विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं, फिर तुम आत्मविश्वास को जीत जाओगी। और विश्वास शब्द हमारे इस इबारत में भी है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उनके नाना जी ने उन्हें सिखाया था, अंतिम समय में सीख गले लगाकर सीख दी थी कि ये संसार कुछ भी नहीं है, कर्म ही प्रधान है, सभी को साथ में लेकर चलना, किसी से भी जलन मत रखना। वो दिन मेरे लिए बहुत अहम रखता है। ऐसे ही जीवन में अहम रखते हैं ये सारी बातें, और ये ऐसे ही बनी रहें आप सबके साथ। मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ, और उस गीत के साथ में मैं एक प्रश्न और यहाँ पर जोड़ दे रही हूँ, और वो प्रश्न ये है, आज तक हमने कई लोगों के लिए मदद की होगी, कभी कोई ऐसी मदद जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आई और आत्मा में सुकून, बताइएगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना, किसी को कुछ देकर हमारा पेट भर गया, ऐसा कब आपके साथ घटित हुआ था, ज़रूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत हम आपको सौंपने जा रहे हैं, ये गीत मैं जो जिस फिल्म से लिया गया उस फिल्म का नाम आपको बता देना है, और ये तीन प्रश्न आपके साथ चल रहे हैं, उल्टा सीधा वाला, आपके माता पिता की सीख वाला, और कोई ऐसी मदद जिससे आत्मा की भूख मर गई हो, थोड़े समय के लिए ही सही।

हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों से सजे हुए शंकर जयकिशन के संगीत के साथ इस प्यारे से खूबसूरत से नायाब से गीत को जो फिल्म अंदाज से लिया गया है। और यही प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि ये फिल्म कौन सी है, और आप सबने बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हमारे एक श्रोता ने प्रश्न पूछा है कि मैं थोड़ी देर से जुड़ी हूँ, क्या चल रहा है बताइएगा उल्टा सीधा। तो हमने एक प्रश्न कहा था कि जैसे राही हीरा, राही का उल्टा होता है हीरा और उसका कोई अर्थ भी होता है, ऐसे ही कुछ शब्द अगर आपके दिमाग में आए तो आप सुझा सकते हैं। साथ ही हमने एक और प्रश्न पूछा कि माता पिता की सीख आप बताइए, और ऐसा कुछ जो आपने किया है और आपको बड़ा सुकून मिला है उसे भी सबके साथ साझा कीजिए। तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जानवरों के लिए दाना पानी की व्यवस्था तो कर सकते हैं, गर्मी बहुत है, सच बात है, हम तो पानी लेकर पी सकते हैं, कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं, पर वो बेचारे अब उध कहाँ जाएंगे, उनकी मदद भी तो हमें ही करनी है ना, क्योंकि उनके जंगलों को साफ करके, उनकी नदियों को पाट कर, उनके समंदर को पाट कर हम उनकी जगह पर रहने लगे हैं, तो इस बात का ख्याल हमें ही उनके लिए रखना होगा। तो हम सभी अगर ख्याल रखें तो कितना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोना बड़ा कीमती है, सोना अर्थात नींद भी बहुत कीमती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया शब्द दिया, सोना सोना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि विधि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत थक जाती थी, ससुराल में बहुत काम करना पड़ता था, तो मेरी माँ कहती थी कि काम करने से इंसान और मजबूत होता है। मुझे अपनी पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता था तो पापा कहते थे कि थोड़ा सोने में से वक्त कम कर दो, पढ़ाई का वक्त निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिल में चाह होनी चाहिए, बस दिल की चाह पूरी करते जाइए। और हमने जो प्रश्न पूछा था उसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंदाज फिल्म मोटरसाइकिल पर हेमा मालिनी को बॉम्बे की मुंबई की सड़कों पर गाते हुए घुमा रहे हैं राजेश खन्ना। बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि जब वह अपनी कॉलोनी गली से निकले तो हर आदमी आपकी इज्जत करे, और वह भी किसी डर या दौलतमंद होने के कारण नहीं बल्कि व्यवहार और नम्रता के कारण। कितनी अच्छी बात लिखी है। एक और श्रोता ने लिखा कि कोई भी काम छुपकर नहीं करना चाहिए, ऐसा उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया। कितनी बड़ी सीख सिखा गए, छुपकर नहीं करेंगे तो गलत काम होगा ही नहीं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे आप किस तरह से जी रहे हैं आप पर निर्भर करता है, जिंदगी सहरा भी है, जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। कितनी अच्छी बात आपने कही। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि माताजी पिताजी के गुजर जाने के बाद इनका भाई जो है वो पंडिताई करते रहे हैं, तो गाँव में तीन बच्चों के साथ रह रहे थे और वो शहर में, और जब विकट स्थिति विश्व की आई थी उस समय रोजगार के अभाव में संकट था, तो आर्थिक जिम्मेदारी निभाई थी और आज वह संपन्न है, पर उनकी बात नहीं भूला। बहुत सही बात है, मदद करने से जो खुशी मिलती है ना,

0: खुशी कहीं नहीं होती। और मैं हमेशा करती रहती हूँ, कभी टीचर्स की, कभी दोस्तों की, कभी फैमिली की, इंसान को बराबर समझती हूँ। कभी कोई भी हो, सबकी मदद करनी चाहिए, बस इतनी अच्छी बात आप लिख रहे हैं। मदद ज़रूर करिए मगर निस्वार्थ रखिए, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। पुराने कपड़े, पुराना सामान, बच्चों के खिलौने आदि, जो कुछ हमारे काम का नहीं है, हम तो अनाथ आश्रम में दे आते हैं। बहुत अच्छा करते हैं, बेचारों के माता पिता नहीं है, किसी बहाने उनके माँ बाप बन जाए तो उनको भी खुशी होगी। हमारे श्रोता ने लिखा कि उनके गुरु जी कहा करते हैं, कीरत करो अर्थात कीर्तन, सत्संग करो, नाम जपो प्रभु जी का, वाहेगुरु जी का नाम जपते रहो, वंड रखो यानी मिल बांट कर खाओ। और इनके पिताजी ने भी यही सिखाया है इनको। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बात अजीब लग सकती है पर मेरे पिताजी मेरे से इसलिए नाराज़ रहते थे कि मैं हमेशा ईमानदारी सच्चाई का साथ देती हूँ। मैं 51 साल की हूँ और लोग मुझे अभी भी बेवकूफ़ समझते हैं। नहीं, सच्चाई का साथ देने वाले का साथ हमेशा उसका ईश्वर ज़रूर देता है, तो साथ देते रहिए, अच्छी बात है। और चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। हमारे श्रोता ने एक लिखा है कि मेरी माँ ने सिखा है कोई कुछ भी बोले उसे मन पर नहीं लेना, हमेशा भूल जाओ यही मानसिकता रखना। हमारे एक श्रोता तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन का बीड़ा उठाया है। उसके साथ लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आँखें भी आँखों के बैंक में डोनेट कर दी हैं, आइज भी आइज बैंक में डोनेट कर दिए हैं। कितना अच्छा काम किया है, आपके बाद भी आपकी आँखें ये दुनिया देख सकेंगी। हमारे श्रोता लिखते हैं एक और, चाहे थोड़ा खाओ लेकिन जो खाओ वो अच्छा खाओ, ये बात पिताजी कहते थे और हमेशा हमें याद रहती है। बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न उठाया है, इस प्रश्न का उत्तर आप सब देने वाले हैं। अब ये प्रश्न मेरा नहीं, हमारे एक श्रोता का है। और वह प्रश्न ये है, आज बच्चों में नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, इसके लिए क्या हम माता पिता जिम्मेदार नहीं हैं? ज़रा इसका उत्तर आप दीजिएगा। और तब तक सुनिए अगला गीत, और अगले गीत में बता दीजिए कि इसके गायक कलाकार कौन है। गायक कलाकारों के नाम बताइए और बताइए क्या बच्चों में कि जो संस्कार अगर कम होते हैं तो उसके लिए माता पिता जिम्मेदार होते हैं, बताइएगा।
1: उठ सब के कद

हम सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से यह गीत। अमित खन्ना ने इसे लिखा, राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, तो आपने तो हमें बड़ी सारी जानकारी दे दी। और उस जानकारी में पहले तो आपने बताया भी कि इसके गायक कलाकार अमित कुमार और लता मंगेशकर हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से बताया कि एक बेहतरीन पारंपरिक गीत है, वासु चटर्जी की एक बेहतरीन पारिवारिक रिश्तों को लेकर बनाई गई फिल्म है। इसके लिए हमारे श्रोता बड़े खुश होते हैं कि उनके गीतों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे श्रोता लिखते हैं कि डेविड बूढ़ा और लीला मिश्रा को, जी को एक ईसाई वाला रोल किया, अमोल पालेकर और टीना जी के प्रेम चल रहा है, डेविड बूढ़ा मस्ती ले रहा है, लीला मिश्रा जी गजब ईसाई कल्चर है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। और अब चलते हैं हम हमारे संदेशों की तरफ जो हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, और जल्दी जल्दी से हम हमारे संदेशों को पढ़ लेते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है सुरीला सफ़र का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता नहीं वस्तुतः नैतिक मूल्य गिरने का कारण स्वयं बालक का ही होता है। बिल्कुल सही बात है, हम इस बात को मानते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की जनरेशन में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण हर माता पिता हैं, क्योंकि हम उन्हें खर्च का पैसा दिया है, मोबाइल दिया है, अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिलाया, लेकिन हमने अपने संस्कार, हमारे गुरुओं के साथ के बारे में बैठकर शिक्षा नहीं दी है। घरों में अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को रखें, इस बात की वो सलाह देते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता ही सबसे पहले जिम्मेदार हुआ करते हैं, समाज या माहौल उसके बाद में, क्योंकि पक्षी अपने चूजे को पंख निकल जाने से पहले तक पालता है और जब पंख लग जाए तो उसके बाद वह आपके रोकने पर भी नहीं रुकेगा। पैदा होते ही शिशु के हाथ में मोबाइल आ जाता है, तो अपने हितों के चलते ऐसे में किसको दोष दें। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी बोलती थी, जहाँ काड़ वहाँ हड़ा बाड़, जो आपके पास है उसकी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करो, अपने आसपास के लोगों की मदद करो, ईश्वर कभी कमी नहीं आने देते। ये बात तो मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ और इस बात का वो ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातों को लेकर इसमें लिखा है। और इसके साथ ही अभी जो हम चल रहे हैं उनमें हमने दो शब्दों के बारे में भी आपसे बात करी थी, तो राख का खरा का राख होता है, जो जितना खरा होगा वो राख नहीं बन पाएगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। इसके साथ ही एक और शब्द आया कि जीना भी कला है। जीना का दो अर्थ होते हैं, एक होता है सीढ़ियाँ और एक होता है जीवन। एक और श्रोता ने लिखा है, नवजीवन का उल्टा सीधा, दोनों एक जैसा होता है। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया, हवा, वाह। एक ने लिखा, इस गर्मी में कोई हवा कर दे तो मुँह से वाह निकल जाती है। जी मन नम, हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है, मन मन यानी चंचलता का प्रेरक है, तो अगर नम है तो आर्द्रता के लिए कहा जाता है। बिल्कुल बढ़िया बात कही आपने। इसके साथ हमारे एक श्रोता ने मन की बात लिख दी कि बहन जब ससुराल जाती है तो भाई को रोना आता है, और शायद अब वही समय वही काल आ रहा है कि बहनें अपने अपने ससुराल जाने की कोशिश करने लगी हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, नाम मना। कई लोग होते हैं जो अपने नाम को बताने के लिए मना करते हैं, और शायद वही सही मायने में बड़े प्रस्तोता होते हैं, बड़े कार्य को करने वाले होते हैं। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, बस सब मिलकर बस कर सकते हैं, ऐसा लिखा है बहुत सारी चीज़ें। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी, सबको खुश करना चाहिए, सबकी मदद करनी

चलिए दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। अब हमारे श्रोता ने, एक और श्रोता ने बात लिखी, मेरे पति देव को हमेशा मदद करने की आदत थी। एक बार उनके मित्र को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा तो मेरे पति ने उन्हें फोटो स्टेट मशीन खरीद कर दिया। आज बात को 20 साल हो गए लेकिन उनकी माँ इस बात को याद करके कभी धन्यवाद देना नहीं भूलती हैं। बहुत बढ़िया बात है। बच्चे सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं। व्यस्त जीवन शैली, काम के दबाव, अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण माता पिता अक्सर बच्चों को समय नहीं दे पाते। इसके अलावा माता पिता का आपस का व्यवहार और घर का माहौल सीधा बच्चों पर असर डालता है। स्कूलों में नैतिक शिक्षा नींव की कमी है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम सबको समझनी चाहिए। और आज के कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सौंपते हैं। बस एक प्रार्थना करते हैं, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए भी मुस्कुराने की वजह बन जाइए। साथ दीजिए, हाथ दीजिए और ये जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा।

हम सुन रहे थे गीत बड़े दिल वाले, फिल्म से लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है लेकिन एक दूसरे के साथ का ठिकाना होता है। अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए, क्योंकि यही पीढ़ी है जो भारत को आगे लेकर जाएगी। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए विधि प्रवीण जैन को, नमस्कार।

0: continued unabated since its creation.
1: At least 31 people were killed and 40 others injured in Israeli raids across southern Lebanon. According to Lebanon's Ministry of Public Health, the strikes targeted yesterday in several towns and villages amid escalating cross-border tensions between Israel and Hezbollah. On to sports. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will face Rajasthan Royals in the eliminator match this evening at New Chandigarh, Mohali. The match will start at 7:30 p.m. The winner will take on Gujarat Titans in qualifier 2 on Friday for a place in the final. In badminton, India's top player H.S. Pranoy produced a superb comeback performance to defeat Indonesia's Jonathan Christie in the opening round of the Singapore Open 2026 at the Singapore Indoor Stadium. Benchmark domestic equity indices were trading in negative territory during the afternoon session today. The Sensex dipped 102 points to 75,908 and the Nifty 50 slipped by 14 points to 23,900 when reports last came in. However, in the broader market at the National Stock Exchange, Midcap 100 index was trading almost 0.3% up. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court upholds Election Commission's power to conduct SIR of electoral rolls, says it is in consonance with Representation of the People Act 1950. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take precautions amid rising temperatures. IMD predicts severe heat wave conditions over Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha. India, Canada reaffirm shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030. CBI arrests two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. U.S. Senator Lindsey Graham questions credibility of Pakistan's role as possible mediator in U.S.-Iran talks, cites Islamabad's long-standing opposition to Israel. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to face Rajasthan Royals in eliminator match in Chandigarh this evening. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह मौसम विभाग ने हरियाणा मध्य प्रदेश पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा अब समाचार विस्तार से सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है एक रिपोर्ट
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और

0: मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
1: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश

0: और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र कोंकण और गोवा, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री

0: रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
3: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
4: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव

0: कर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे दाग फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे दीवाना फिल्म का यह गीत, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत, रामी धुबन फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में राम मूर्ति के बोल और हीरेन बोस के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत जलपरी फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में जफर राही ने इसे लिखा, सुरेश कुमार ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। यह था कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत। और आज्ञा दीजिए मुझे इस कार्यक्रम से। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारे सभी सहेलियों सखियों को और सखा को दीपा माहेश्वरी
2: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
3: क्या बात है आरती, हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे पसीने में तरम तर हो रही हो आप और भागते भागते आ रही हो, क्या बात है। पूरी सखियों पूरी पसीने में हो रही हैं, ये ऊपर से लेके नीचे तक
2: क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि बता नहीं सकते। मतलब बाहर आप थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं ना तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, इतनी गर्मी इतनी उमस हो रही है।
3: बात तो बिल्कुल सही है और भाई देखो इसमें अपना सब है, हमारे सभी साथी बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम सब भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार एक दूसरे को अगर याद दिला दिया जाए ना तो अच्छा रहता है। वो क्या कहते हैं ना, रिवीजन होते रहना चाहिए,
2: बिल्कुल होते रहना चाहिए। और गर्मी के ये जो दिन है ना इसमें पसीना जब बहता है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है जब हमारे शरीर से, तो बहुत ज्यादा हमें पानी की कमी अंदर हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें, बहुत ज्यादा मत पिए लेकिन थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पानी पीते रहें।
3: बिल्कुल।
2: तो

0: शरीर में नमी बनी रहेगी।
1: और ऐसे पेय जो ठंडे होते हैं, तो जैसे कि जलजीरा हो गया है या आम का पन्ना, इसका भी सेवन करते रहें, और अपना गन्ने का रस है इसका करते रहें, नारियल पानी लेते रहें, ताकि जो खनिज है, मिनरल्स हमारे शरीर में पसीने के साथ साथ निकल जाते हैं, उनकी कहीं पे भी किसी तरह से कोई कमी ना हो। और जरूरत ना हो तो भर दोपहरी में बिल्कुल बाहर ना निकले, है ना।
0: और साथ ही
1: 11 बजे के बाद से तो ऐसा लगता है कि धूप जैसे तप रही है और हम 5 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं आज तो जाना जरूरी है, तो पूरी तरह से अपने आप को ढक कर जाए, हाथ पे सर पे भी हम स्टोल लगाती हैं महिलाएं, और अब तो बंडाना भी आ गए हैं जो कि हमारे सखा भाई सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरह के अलग अलग आ गए हैं, तो उन सबको आप अच्छे से बिल्कुल अपने शरीर
0: बिल्कुल अपने को पूरा ढक के निकले, जिससे कि धूप जो है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान ना कर सके। और साथ ही आप जैसे खीरा है, ककड़ी है, इस तरीके जो पानी वाले जो फल हैं, जो सैलेड हैं, वो आप जरूर खाएं, और खाने से ज्यादा आप इनका सेवन करें और पानी पिएं, बहुत ज्यादा जरूरी है समय अपने आप को बचा के रखना।
1: जी, और खाने में भी ऐसा नहीं है भाई, मन क्योंकि छुट्टियों के भी दिन चल रहे हैं ना, बच्चे भी आए हैं घर में और मेहमान भी हैं, कुछ ना कुछ तो अलग अलग तरह के व्यंजन तो बनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि तला भुना ना हो, और अगर खाना भी पड़े तो उसको सीमित मात्रा में लें, और दूसरे दिन कुछ हल्का भोजन, हल्का इस तरह का रेसिपी बना लें।
0: कोशिश करें कि हल्का फुल्का ही खाएं, जिससे कि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस मौसम में अगर हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं तो शरीर के ऊपर बुरा असर तो पड़ता ही है, क्योंकि हजम नहीं हो पाता ना वो चीज।
1: जी,
0: तो इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा हल्का खाना खाएं। अगर एक टाइम आपने भारी भोजन किया है तो आप दूसरे टाइम बिल्कुल हल्का लें,
1: हल्का
0: सैलेड वगैरह।
1: और बात जब इतनी व्यंजन की चल रही है तो हम ये भी बताते चलते हैं अपना श्रोताओं को, सखियों को, कि आज हम चावल के व्यंजन के बारे में बातचीत करेंगे।
0: तरह के
1: घर में जी
0: तरह तरह के चावल के व्यंजन,
1: तरह के चावल के व्यंजन आपके घर में कोई स्पेशल बनता है क्या, तो वो जरूर बताइएगा। वैसे संदेश आए हैं, पर हम चाहते हैं आपके घर में अगर चावल का कुछ ऐसा बनाना हो जाए तो आप क्या बनाएंगी, हमारी सखियां बताएं और हमारे सखा भी बताएं कि उन्हें किस तरह का व्यंजन।
0: बिल्कुल, क्योंकि आजकल सखा भी बनाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल,
0: हर घर में सखा भी इसमें भोजन बनाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं सब कामों में। तो आप बताइए आपको कौन सी ऐसी, कौन सा ऐसा व्यंजन है जो बहुत ज्यादा पसंद है, जो आप बनाते भी हैं और खिलाना आपको पसंद है।
1: बिल्कुल, और आरती आज हमने हमारे जो भी सखी सहेली परिवार के सारे श्रोताओं को एक शब्द दिया है, आलोचना। तो शब्द यहाँ से स्टूडियो से आए हैं लेकिन आप तक पहुंचे हैं, तो आप बताइए इस शब्द आलोचना के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या अनुभव हैं, और क्या आपको लगता है ये
0: आप क्या सोचते हैं,
1: क्या सोचते हैं इसके बारे में,
0: क्योंकि इसको सकारात्मक तरीके से भी समझा जा सकता है और नकारात्मक तरीके से भी इसके पहलू हो सकते हैं,
1: और उसकी वजह से कई सारे जिंदगी में हम लोग ने अलग अलग तरह के अनुभव भी सब लोगों ने उसको जिया है ना, तो वो जरूर बताइएगा। और साथ में देखिए बुजुर्गों में जो एक मोबाइल के प्रति प्रेम जो हम देखते आ रहे हैं, हम अपने घर के नीचे गार्डन में या कुछ ऐसा कॉमन एरिया होता है वहां देखते हैं बड़े, मतलब बच्चे तो मोबाइल की तरफ है ही आकर्षण, अब जो घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें भी मोबाइल देखने की आदत बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बढ़ रही है आदत, उसके फायदे भी हैं क्योंकि वो सीख भी रहे होते हैं कि टेक्निक क्या है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें, अगर हम घर में अकेले हैं तो क्या क्या चीजें हमें इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। और कुछ हमारे बड़े ऐसे भी होते हैं वो जो बहुत आसानी से चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए ये एक मनोरंजन का साधन भी हो जाता है। देखिए इसके सकारात्मक विचार भी
0: हर चीज के दो पहलू होते हैं,
1: गुण हर एक चीज के सिक्के के तो दो पहलू हमेशा होते हैं, तो बहुत सारी राय हमारे श्रोताओं ने तो लिख भेजी, हम चाहते हैं आप और लिख के बताइए
0: कि इसमें नकारात्मक पहलू क्या है,
1: क्या
0: इसके
1: है?
0: और सकारात्मक क्या है। और साथ ही आज हम बात करेंगे साड़ियों संसार लेकर आए,
1: तो साड़ियों के संसार आज कहाँ चलने वाले हैं।
0: आज हम साड़ी लेकर आए, कलमकारी साड़ी जो आंध्र प्रदेश में बहुत की है,
1: बहुत सारी सखियों को ये प्रिय होगी साड़ी, मुझे तो पूरा विश्वास है। तो बहुत सारे संदेश लिखने हमने अपने श्रोताओं को कह दिए हैं,
0: तो गीत सुन लेते हैं पहले,
1: चलो चलते हैं।

0: यही तो सवाल हम आरती से कर रहे हैं कि भाई आरती आप हमारी कौन हैं?
1: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं अब सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, सखाओं के भी,
0: तो हम सबकी हैं सखियां सहेलियां और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन का और गीतों के सफर का, जहाँ बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर देंगे अपने,
0: बिल्कुल,
1: तो इस वजह से तो हम आज लेकर आए कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियां निकली हैं। ये साड़ी कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने में बहुत ज्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं। क्योंकि हम लोग ऐसी साड़ियां ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज्यादा भारी ना हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि आरती रोजमर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कंफर्टेबल हो और साथ में एक एक जो उनके लुक आए,
1: गरिमामय लुक आए।
0: तो कलमकारी साड़ियां कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती है, ब्लॉक प्रिंटेड डिजाइनों के लिए ये साड़ियां हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा

0: ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती है, फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो बहुत
1: बहुत बहुत सुंदर लगती हैं
0: जी।
1: और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बनाए, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी
0: जी,
1: जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्त चित्रण या ब्लॉक प्रिंटिंग का टेक्निक अपनाई जाती है।
0: बिल्कुल। और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें पुष्प, पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना, ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
1: बिल्कुल। और इससे कलमकारी साड़ियां विभिन्न अवसरों के लिए बहुत ज्यादा बहुमुखी बन गई, मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल हैं। प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिजाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहाँ तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं
0: जी। अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों, तो उसमें कई तरह के चरण है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है, उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती, विष्णु या महाभारत, रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियां कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
1: बिल्कुल। और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं
0: जी।
1: और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।
0: बिल्कुल। और कलमकारी साड़ी बनाने में, एक पीस को बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो काली रूपरेखा, जो एक उसमें बॉर्डर हमेशा जो इसमें आकृति की बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है
1: जी। कितना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है इसका।
0: और हम देखे ना जाके दुकान पे फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं। हम जानते ही नहीं कि साड़ी, अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना उसमें
1: बहुत मेहनत है,
0: कितनी मेहनत है, परिश्रम।
1: बिल्कुल। और पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका और नीले रंग के लिए नील। प्रत्येक रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला जाता है। एक बार जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिजाइन बनाते हैं।
0: क्या बात है। और कलमकारी डिजाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम केवल वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर ही कर सकते हैं। और डिजाइनों की रूपरेखा बनाने के लिए एक महीन नोक वाले ब्रश या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है
1: जी। और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है। फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है। और कलमकारी डिजाइन भारतीय पारंपरिक और कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं
0: जी। कलमकारी साड़ियां आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब इनकी देखभाल होती है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इन्हें हमेशा अलग से धोइए, ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि उसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर निकाल देना है। और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज धूप में कभी नहीं सुखाना है, कम आंच पर उल्टी तरफ से ही स्त्री इसे घरना है।
1: बिल्कुल। और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियां वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, इसलिए कोई भी दो साड़ियां पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती। मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसके जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिजाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और ये सच में ये साड़ियां इतनी

0: हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि साड़ियों के बिना हमारा मन ही नहीं लगता,
1: मन नहीं लगता। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले विषय पे।
0: हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना बिल्कुल
1: मन नहीं लगता है
0: भाई। बात हम सिर्फ बुजुर्गों की या बड़ों की कर रहे हैं, लेकिन सबका हाल कुछ
1: बच्चे बूढ़े जवान सबका एक ही है बिल्कुल, जिसके लिए सब लोग मतलब जिसके बिना जी नहीं सकते, वो है मोबाइल।
0: बिल्कुल। और ये स्मार्टफोन ना आरती हमारे जीवन का जैसे एक अभिन्न अंग सा बन गया है।
1: जी,
0: जीवन को आसान बनाने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स पे देखो ना आजकल निर्भर होते ही चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा स्मार्टफोन।
1: जी, चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान

0: और हमेशा आप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की जरूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए जीपीएस से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहे आसानी से देख सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयां मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी एप्स भी होते हैं, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती हैं, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो वो भी रहता है और मनोरंजन भी

0: होते हैं जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं, मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती हैं, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो उस वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता है।
0: बिल्कुल, और मोबाइल फोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक, ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल, सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है, लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना, वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है हमें,
1: क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ऐसा लगता है जैसे कट से गए और घंटों फोन गर्दन झुकाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाते
0: बिल्कुल,
1: हैं
0: और वो हमारे शारीरिक बनावट पे भी बुरा असर डालता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि एक ही तरीके के उसमें हम बैठे रहते हैं, एक ही तरीके के पोज बनाए हम बैठे होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से परेशान करता है। और हम सभी ने बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते, और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं, तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी, जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करते करें या बच्चों के साथ में खेलें या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो खेलते हैं अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है।
1: बिल्कुल, वो कहीं छूटता सा चल रहा है। एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ AI चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं, ये इस तरह की रिपोर्ट आई है। और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन टैबलेट और टीवी समेत सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज्यादा
0: बिल्कुल
1: हो रहा है।
0: ये शोध में सामने आया है
1: जी
0: कि बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा फोन देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा फोन देखने की वजह से फोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जिसे
1: जी,
0: वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है, जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना, तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती छाई रहती
1: और
0: है।
1: हम शिकायतें करते रहते हैं, आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं। तो कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए।
0: बिल्कुल, और बुजुर्गों में फोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी तनाव भी पैदा कर रही है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है, भूलने लगते हैं हम चीजों को।
1: हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही। और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है। सोशल मीडिया या वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये। इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुक कर बैठे रहना, फोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने लगते हैं।
0: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है, और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों में छोड़ दीजिए, गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सुदृढ़ नहीं हुए हैं, तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
1: बिल्कुल, और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और फंस भी जाते हैं, ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है, लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियां एंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
0: ऐसे तो गेम बना रहे हैं ना वो लोग
1: जी,
0: कि जिससे कि वो गेम में लगे रहे, फिर अगला लेवल करना है, जैसे कि बच्चों में होता है।
1: हाँ,
0: वैसे बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके के गेम्स बनाए जाने कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं, तो जिससे कि उनको
1: तो ये और उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली चीजें हो जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब चीजों से।
0: और सबसे

0: बात है दीपक की, हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए बजाय इस तरीके की वर्चुअल दुनिया में रहने के।
1: बिल्कुल, और इसी को लेकर देखो ना, कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं। वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है। शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल, लेकिन तो साथ देता है, वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं। मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
0: बिल्कुल, और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार, जीवन सीधा साधा था, यारों का मेला भी था, तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था, सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानी थी, जब से आए नेट की आंधी सब उसमें उड़ चले, इससे सीखा उससे सीखा ज्ञान का पान कर लिया, अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं है उनके हाथ, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं, नींद हो गई उनकी लेकिन रातों को भी बतियाते हैं, डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल, डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं, बुजुर्ग बने हैं बड़े सियाने दवा खोज कर खाते हैं, उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे उड़ाते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है,
1: क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। और बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं एक अंतराल के बाद। जी,

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई,
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि भाई देखिए, मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना।
1: बिल्कुल।
0: पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़ी ऊंची आवाज में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास, आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती हैं कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। और साथ में कहती है, फायदा तो मुझे यही नजर आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है, अति हर चीज की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज का एक संतुलन उन्हें जरूरी है।
1: ये जो चीजें हैं इनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी है, अगर कोई इफेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आंखों पर खराब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीज़ों में ना फंसें, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकल आई आपके, ऐसे इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसमें ना फंसें, ठीक है। जैसे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं, वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस कहने का ये मतलब है, और बेहतर होगा इस तरीके की चीज़ों को हम समझें।
0: और एक और संदेश आया है कि बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है, इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं है, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फोन बड़े बुजुर्गों के लिए।
1: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल, ये हम कभी ये नहीं कह रहे कि वो कोई चीज़ बुरी है, सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीज़ें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीज़ें को करें, तो कोई चीज़ इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि और फायदेमंद है, बल्कि वो अपना दवाइयाँ मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो

0: रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल पे। बहुत फायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज़्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आँखों में या उसी पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है। और दूसरी चीज़ें चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीज़ें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना पर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ उसको मोबाइल को देखते देखते कि हम ये चीज़ कर पाते काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीज़ें जो बुरा असर अगर आप पे नहीं डाल लें तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल सही
0: जब तक आप
1: और जो अकेले रहते हैं घर में सीनियर सिटीजन
0: जी,
1: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फायदा है
0: जी, बिल्कुल।
1: कि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नहीं सीसीटीवी टाइप लगा दी जाती हैं ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है, बस अगर उसका सही तरीके से संयमित इस्तेमाल करना
0: के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है, हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीज़ें हैं
1: जी।
0: और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है। मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है। और बताती हैं कि वो मेरे पापा भी पहले छोटा फ़ोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया। अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके अलावा वो विविध भारती भी फोन भी जो होता है उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
1: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते हैं।

लगाते बनी मन चली, छुप के छुपा के छुपी नजरें बचाते गुप चुप चली।

0: तो अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज्यादातर दिखाई देती है, जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाह वाह तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है। फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और तीता तीता, तो आलोचना ऐसे ही तिक्त रस युक्त ऐसी चीज़ है। जो किंतु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
0: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है, बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए। आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि तरीके से की जाने चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुंचाती है। और हमें आलोचना से घबराने की बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियां वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ ही हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए, और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भावना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है, सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
1: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता है पूरे पहलू दोनों को दिखाती है, ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस तरीके से की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
0: तो अब क्या करना चाहिए?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: चलिए

0: आरती, देखो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़े हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही
1: है। खाने की इच्छा, तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहली रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं?
1: पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात,
1: मीठी मिठास से शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और स्वाद अनुसार चीनी। आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आप वो से ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज़्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से आधा कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिए और तैयार है आपकी खीर।
0: क्या बात है। तो देखिए ये खीर बन गई है चावल की। अब हम बता रहे हैं आपको चावल की पिन्नी। इसके लिए लेना है 2 कटोरी चावल का आटा, 1 गिलास दूध, आधा कटोरी चीनी, 5 इलायची, 15 के करीब बादाम, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसी तरह काजू लेना है, 1 सर्विंग स्पून किशमिश और 1 कटोरी देसी घी। बनाना है चावल की पिन्नी के लिए आप चावल के आटे को कोरा भून लें जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी थोड़ा मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें आधा घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे आधा घी डालें, 5 मिनट तक उसको भूनना है, फिर 1 गिलास जो दूध लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे। अब अच्छा। पहले तो थोड़ा सा धीरे और उसके बाद फटाफट फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर आधा घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम हैं, काजू हैं जो आपने भून के रखे हुए हैं, चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं, और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए वो डाल लीजिए, फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दें।

0: लीजिए, ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल की जो चावल के आटे की पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
1: बहुत ही बड़े लगते होंगे। और
0: हाँ बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं।
0: चलिए
1: तो अब मैं बताते हैं कि चावल का डोडा, इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है, जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते, हरी धनिया के पत्ते, प्याज के पत्ते, टमाटर, आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंद लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं। चाहे तो बेल कर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
0: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे, बनाकर देखेंगे, लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम ये गीत।

0: आरती, देखो ना, बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारा समय की जो सुइयां
1: समय है, हमें सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है। अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफकोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ। और ऑफकोर्स बोरीवली ही नज़दीक में आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास।
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पे भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे। हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज, जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से। और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गांव में है जहाँ पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं। ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ज़रूर मैं पहली थी लेकिन आखिरी नहीं हूँ। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियां हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी, बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
0: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है। और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
1: पहले तो पता

0: नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे,
1: जी
0: क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई, एक्चुअली कह सकते कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में, कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है 12th स्टैंडर्ड में ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एजर
1: अट्रैक्ट
0: काफ़ी
1: करती है।
0: अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो वाइट तो पता चला एप्रेन भी वाइट होता है। और इमिडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ से एक नई दुनिया शुरू हुई, जो मेडिकल की, जो काफ़ी सीरियस स्टडीज़ और हार्ड वर्क, आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आँखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट
1: जी
0: आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
1: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
0: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से, मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू हुई। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है। इट्स अ ब्यूटिफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी, आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है, तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरी से काम कर सकते हो। आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए। क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है।
1: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं।
1: ओ, इकबाल फिल्म का गाना है।
0: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और
1: जी
0: सबसे रिलेट होता है।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहां से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर एपीजे कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में, हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूंकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
0: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
1: एक ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आए और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पे सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आए और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में। तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर है, ऑलरेडी जिनको बेटी है, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की जिंदगी देखी हुई है, तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो मेडस्केप का भी

0: बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करें, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं। क्योंकि आज भी हम बोले या ना बोले अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है। और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है। डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं, वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बड़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बड़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया। तो डेफिनेटली आज जो लड़कियां कर रही हैं वो फ्रीडम है। आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीजें अवेलेबल है जो स्पॉट पे उनको एम्पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज्यादा एजुकेशन हुआ तो उनके एज की लड़का मिलेगा कि हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा। बट उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड कि जो लेडीज थी वो ज्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कुकिंग हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है जहां पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है आपको, आपको करियर भी देखना है, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वॉल्वमेंट से, सपोर्ट से। तो आई थिंक दैट इज चेंज टुडे।
1: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है। इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है। तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेड्सकेप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं। शुरू किया था फीमेल फिटिसाइड से, स्किलिंग से, बहुत सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, वो कोविड से शुरू किया है। फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे। 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद। फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ। और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अपने वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेट ऑफ इंडिया के से आ रही। ऑफकोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था।
1: क्या बात है।
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ, पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफकोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा, उनका इतना सिंप्लिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेड्सकेप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए। तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा, और
1: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया।
0: हाँ।

0: उन्होंने दिया, एक्चुअली मिशन दिया, एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो। तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है।
1: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे, यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं।
0: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है। जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है। इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता
1: अच्छा,
0: है
1: अच्छा।
0: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं। 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है। नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे हैं। तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना, आप इसे प्ले कर सकते हैं।

0: भाई 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली आप ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए।

0: जैसा कि कलाम साहब का बोलना था, तो जैसे कि सीपीआर जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी सीपीआर क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने सीपीआर तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे, तो हमने पहला सीपीआर मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
1: और अचानक क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और

0: सीपीआर मैंने गांव में किया था, जहां पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी। और
1: अचानक क्या
0: most...
1: हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहाँ पे मैं भी पहुँची थी, और उसी टाइम उनको ऑल द मोस्ट गाँव और लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई। लेकिन मैंने वहाँ पे सीपीआर किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव की, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये बीकेसी हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को ज़मीन पे डाल के रोड पे भीड़ लगा के बैठे हैं। तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया। मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, सीपीआर किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। आईसीयू ने बोला आपने राइट ली, उनको सीपीआर दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया। तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको सीपीआर किया, वो स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है ना फ्लाइट में, थोड़ी पैनिक हो जाता है। तो सीनियर सिटीजन को हुआ था तो वो भी एक जान बचाए, जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी तो वहाँ पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए। तो फिर वही होता है ना, डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता तो तक 25% हमारी पॉपुलेशन को सीपीआर आनी चाहिए
1: जी।
0: तो वो एक अच्छा मकसद है। एक ज़माने में, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, कि कार्डियोपल्मनरी रिसैसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था। सीपीआर क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था
1: जी।
0: लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल, मेरी कम्युनिटी हो या पुलिस हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर एक एम्प्लॉई हो, वॉचमैन हो, आज लोग इजिली बोल पा रहे हैं कि सीपीआर करना है।
1: तो लोगों में ये अवेयरनेस
0: बहुत,
1: ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है,
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है। बट एडॉप्टेशन नहीं आया है और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बुला रही डॉक्टर हम CPR, मुझे तो आता था लेकिन मैं डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूँ, तो उसको ये जेन्युइन डर था। तो मैंने बोला देखो अगर आप

0: यार नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फायदा नहीं, हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है। अगर अभी आप CPR कर रहे हो और समझो 1, 2, 3, 1 में आपने देखा पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया एम्बुलेंस को बुलाओ, जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप CPR करो। एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा। एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला। अगर आपने 30-60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीज़ें जाने या ना जाने वो कोशिश बहुत करते हैं। मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया और हम एक हो जाते हैं कभी कभी। तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है, और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में CPR दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है और इजिली मॉड्यूल्स हैं, तो मैं टोटली ओपन हूँ कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको।
1: बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे CPR सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
0: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है। तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो। डरना नहीं चाहिए क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है तो उसकी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की।
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
0: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे डॉक्टरों को CPR आता ही आता है, वहाँ पे जाके बैच बना के कर सकते हैं। या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फ़ोन करके अगर CPR सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscapeindia@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू।
1: अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं।
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूँगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे। तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो ऐसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
1: वाह वाह।
0: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पार्ट न हो। तो बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है, समीर इसमें शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज़ दिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको जरूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता। और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली। तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है। सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवर लुक किया। सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर। सो ये एक तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस। और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमो सोनोग्राफी सुबह में, 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को सीए था, तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी।
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इशू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में। तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा। पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से, तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास। ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है, आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का। मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है। हम बाहर जाते हैं पूजा करने, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है। तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है और उसकी पूजा के लिए, जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनकी रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूँगी, अरे मैं उस जगह जाऊँगी उसके बाद करूँगी। कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी, मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लंप, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लंप था, तो मुझे बोलती नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगी तब मैं बायोप्सी

0: करूंगी, तब मैं ये करूंगी, मुझे 5-10 मिनट उनकी यही बात चली, तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं
1: था, प्रायोरिटी नहीं थी,
0: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने। वो सिर्फ बोली थी अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग वैक्सिंग सब चीज़ के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं। और उस पर कटौती भी करते हैं, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा आर्यन हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइमली उसका फॉलोअप उसके, तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की वो रेगुलर चेकअप पे कर, 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है। अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है, अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी न हो मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
1: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली, ये बेहद खतरनाक है।
0: ये बहुत खतरनाक है। अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था, तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में, चैटजीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था। लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6-7 महीने किए, और जब आई तो काफ़ी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं वो जो सोशल मीडिया होता है वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब के आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज़ सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है, बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज़ जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज़ उसकी यूज़ करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज़्यादा है, एज अ जोकिंगली, बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको
1: जी।
0: आपको तो इतना दूर पहुंचा दिया, आपने वो दवाई भी ले ली, खा भी लिए। तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाज़म ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट हुए
1: जी।
0: उस साइड इफ़ेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और जो पेशेंट है भारत के वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है। इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी,
1: सेम दवा।
0: हाँ, सेम दवा। सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे घर की नहीं है, हर घर की है, क्योंकि उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है, और ये दर्द का है, तो वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं। बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उसे मोह है। तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये

0: दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया, और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयाँ फेल हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है, और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द यू नो काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके यू नो कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता, और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाज़ा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
0: तो मेरे डैड बचपन में काफ़ी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे, जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे, लेकिन ये बात मुझे इम्पॉर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है, जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक डीप वैक्यूम। या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है, वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है। आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, पर जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे। तो उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना,
0: पापा जल्दी आ जाना। ये गाना मुझे बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट।
1: सुनते ही ये गाना।

0: डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मेडिकल की दुनिया की जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर ऑल्सो।
0: अच्छा।
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई विल डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड, एंड यू नो क्वाइट डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम, बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो। द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ इज वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस, एंड आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो। सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ। एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग, सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है बट चॉइस ऑफ सॉन्ग है। बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली, अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी, मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड ऑल्सो, कभी टीवी देखा नहीं, ज़्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी।
0: जी बिल्कुल। तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीज़ें लॉन्च करने जा रही हैं, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियाँ हैं आगे की, क्या मिशन है?
1: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है, पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में। और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है, और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल, उसके बारे में, और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया है जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी, हर स्पेशलिटी के 8,200 इंस्टीट्यूट और 78 MP पार्लियामेंटेरियन सपोर्टिंग, और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए टू सपोर्ट आवर मिशन। बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, कि जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज़ करें, न कि कियोस में यूज़ करें। और पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है, तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है। अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हों, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल हैं, और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर, सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी हो, सब में ये बातें चल रही हैं। और मैं एक जरूर

0: बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं। वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिसिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
1: जी
0: शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए।
1: जी
0: तो ये बहुत बड़ा चीज़ है और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर के सेफ्टी के लिए आप भी आवाज़ करिए और सी टू इट की वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल बदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता। सुनना न भूलिए, शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफ़ी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में ला के मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को आपकी सखी सोनिका का प्यार भरा नमस्कार। सखियों कैसी हैं आप? आशा करती हूँ आप अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगी और कर रही होंगी हमारे इस कार्यक्रम का इंतजार। तो लीजिए, आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए चर्चा के एक नए विषय और नवीन जानकारी के साथ। सखियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे समाज, संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का आधार है, और वह है स्वस्थ संस्कार, सभ्य परिवार। सखियों, परिवार मनुष्य का पहला विद्यालय होता है। बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता, दादा दादी और परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है। परिवार में मिले संस्कार ही उसके व्यक्तित्व को आकार देते हैं। यदि परिवार में प्रेम, सम्मान, अनुशासन और नैतिकता का वातावरण हो तो बच्चा भी इन्हीं गुणों को अपनाता है। इसी कारण कहा जाता है, जैसा संस्कार वैसा व्यवहार। आज के आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक ने जीवन को सरल बना दिया है, लेकिन इसके साथ साथ पारिवारिक मूल्यों में गिरावट भी देखने को मिल रही है। लोग अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार के लिए समय निकालना कठिन हो गया है। बच्चों के पास मोबाइल और इंटरनेट तो है, लेकिन माता पिता का स्नेह और मार्गदर्शन कम होता जा रहा है। ऐसे समय में स्वस्थ संस्कारों की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। सखियों, स्वस्थ संस्कारों का अर्थ केवल अच्छे शब्द बोलना ही नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार में विनम्रता, ईमानदारी, सहनशीलता और दूसरों के प्रति सम्मान रखना भी है। जब परिवार में बड़ों का आदर किया जाता है, छोटे बच्चों को प्रेम दिया जाता है और सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, तब वह परिवार वास्तव में सभ्य परिवार कहलाता है। सभ्य परिवार की सबसे बड़ी पहचान होती है आपसी प्रेम और सहयोग। जिस घर में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जाता है, वहां सुख और शांति बनी रहती है। परिवार के सदस्य यदि कठिन समय में एक दूसरे का साथ दें तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। यही पारिवारिक एकता समाज को भी मजबूत बनाती है। माता पिता की भूमिका स्वस्थ संस्कार देने में सबसे महत्वपूर्ण होती है। बच्चे वही सीखते हैं जो अपने घर में देखते हैं। यदि माता पिता सत्य बोलेंगे, दूसरों का सहयोग करेंगे, उनकी सहायता करेंगे और अनुशासन का पालन करेंगे, तो बच्चे भी वही आदतें अपनाएंगे। इसलिए केवल उपदेश देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वयं आदर्श बनना आवश्यक है। सखियों, आज समाज में बढ़ती हिंसा

असहिष्णुता और नैतिक पतन का एक कारण संस्कारों की कमी भी है। जब बच्चों को बचपन से ही नैतिक शिक्षा और मानवीय मूल्यों का ज्ञान नहीं मिलता तो वे सही और गलत में अंतर समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसीलिए परिवारों को चाहिए कि वे बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी दें। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव से वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है का संदेश देती आई है। हमारे संस्कार हमारे प्रेम दया करुणा और सेवा की भावना सिखाते हैं। यदि प्रत्येक परिवार इन मूल्यों को अपनाए तो हमारा समाज अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध बन सकता है। सभ्य परिवार केवल आर्थिक रूप से संपन्न होने से नहीं बनता, एक गरीब परिवार भी सभ्य हो सकता है यदि वहां आपसी सम्मान सादगी और नैतिकता हो। वहीं दूसरी ओर धन संपत्ति होने के बावजूद यदि परिवार में कलह अहंकार और असम्मान हो तो वह परिवार कभी सुखी नहीं हो सकता। सखियों, इसीलिए हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि जीवन में सफलता केवल पैसे कमाने से नहीं मिलती बल्कि अच्छे चरित्र अच्छे व्यवहार से मिलती है। एक संस्कारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है सम्मान प्राप्त करता है और उसका आचरण ही उसकी पहचान बनता है। आज आवश्यकता है कि हम अपने परिवारों में फिर से संस्कारों की ज्योति जलाएं, परिवार के साथ समय बिताएं, बच्चों से संवाद करें, बड़ों का सम्मान करें और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को अपनाएं। यदि हर परिवार स्वस्थ संस्कारों वाला बन जाए तो हमारा समाज अपने आप सभ्य और मजबूत बन जाएगा। सखियों, बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा। आइए करवाते हैं आपका मनोरंजन और सुनवाते हैं ये मधुर गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सखियों, आशा करती हूँ

आपको गीत पसंद आया होगा और आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण सरकारी अभियान की जो बच्चों के सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक भविष्य से जुड़ा है और इस अभियान का नाम है मिशन वात्सल्य। सखियों, वात्सल्य शब्द का अर्थ होता है प्रेम, स्नेह और संरक्षण। इसी भावना को आधार बनाकर भारत सरकार ने इस मिशन की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों की सुरक्षा और देखभाल करना है जिन्हें किसी कारणवश परिवार का सहारा नहीं मिल पाता या जो कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। इनमें अनाथ बच्चे, सड़क पर रहने वाले बच्चे, बाल मजदूरी या बाल विवाह के शिकार बने बच्चे तथा हिंसा और शोषण से प्रभावित बच्चे शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा यह मिशन बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बेहतर जीवन देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि समाज में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बढ़ाने का प्रयास भी है। मिशन वात्सल्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है हर बच्चे को सुरक्षित वातावरण देना। एक बच्चा तभी अच्छे से विकसित हो सकता है जब उसे प्यार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मिले। लेकिन हमारे समाज में आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इन बुनियादी अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। कोई गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाता तो कोई परिवार से बिछड़ जाता है, तो कोई हिंसा या शोषण का शिकार बनता है। ऐसे बच्चों को नई उम्मीद देने का कार्य मिशन वात्सल्य कर रहा है। इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बच्चों के लिए आश्रय गृह, बाल देखभाल संस्थाएं, काउंसिलिंग सेवाएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही बच्चों को उनके परिवारों से जोड़ने का प्रयास भी किया जाता है ताकि वे पारिवारिक वातावरण में सुरक्षित जी सकें। सखियों, बच्चों का मानसिक और भावनात्मक विकास भी उतना ही आवश्यक है जितना उनका शारीरिक विकास। मिशन वात्सल्य बच्चों को केवल भोजन और आश्रय ही नहीं देता बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीने की प्रेरणा भी देता है। इस योजना के माध्यम से बच्चों को कौशल विकास, शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। आज के समय में बाल अपराध, बाल तस्करी और ऑनलाइन शोषण जैसी समस्याएं बहुत ही तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में मिशन वात्सल्य समाज को जागरूक करने का कार्य करता है। लोगों को यह बताया जाता है कि यदि कहीं किसी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा हो तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित विभाग या हेल्पलाइन को दे दें। सखियों, बच्चे देश का भविष्य हैं। यदि उनका वर्तमान सुरक्षित और मजबूत होगा तभी देश का भविष्य उज्जवल बनेगा। एक शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित बच्चा ही आगे चलकर एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। इसीलिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो सखियों, बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा। चलिए आइए करवाते हैं आपका मनोरंजन और सुनवाते हैं एक मधुर

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, आशा करती हूँ आपको गीत पसंद आया होगा। आज हम विविधता के अंतर्गत आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे केवल पर्यावरण की रक्षा ही नहीं होगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। और वह विषय है यात्रा के दौरान बीजों को सही स्थान पर डालकर वृक्षारोपण में बने भागीदार। सखियों, हम सभी अपने जीवन में कई बार यात्राएं करते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, कभी ट्रेन से, कभी बस से, कभी बाइक से, तो कभी कार से। अक्सर रास्तों में खाली जमीन, सूखे मैदान, पहाड़ी क्षेत्र या सड़क किनारे ऐसे स्थान दिखाई देते हैं जहां हरियाली की कमी साफ महसूस होती है। यदि हम चाहें तो अपनी छोटी सी पहल से इन स्थानों को हरा भरा बना सकते हैं। सखियों, प्रकृति ने हमें जीवन दिया है। पेड़ हमें शुद्ध वायु, छाया, फल, वर्षा और जीवन का संतुलन प्रदान करते हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण आज जंगल कम होते जा रहे हैं। गर्मी बढ़ रही है, वर्षा का चक्र बिगड़ रहा है और प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे समय में वृक्षारोपण एक जिम्मेदारी बन जाती है। अब सखियों, आप सोच रही होंगी कि यात्रा के दौरान वृक्षारोपण में हम कैसे भागीदार बन सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। आप जब भी यात्रा पर निकलें, अपने साथ कुछ बीज रखें, जैसे नीम, पीपल, अमलतास, गुलमोहर, जामुन या अन्य स्थानीय पेड़ों के बीज। इन बीजों को ऐसे स्थानों पर डालें जहां मिट्टी हो, नमी हो और भविष्य में पेड़ बढ़ने की संभावना भी हो। सखियों, बरसात का मौसम इसके लिए सबसे उपयुक्त रहता है। यदि बीजों को सही जगह और सही मौसम में डाला जाए तो उनके अंकुरण की संभावना भी बढ़ जाती है। सखियों, इस कार्य में किसी बड़े खर्च या विशेष साधन की आवश्यकता नहीं होती बल्कि जागरूकता और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए, यदि हर व्यक्ति यात्रा के दौरान केवल 5 बीज भी सही स्थान पर डाल दे तो लाखों नए पौधे उग सकते हैं और ये पौधे आगे चलकर विशाल वृक्ष बनेंगे जो धरती को हरा भरा बनाएंगे। ये कार्य न केवल पर्यावरण संरक्षण करेगा बल्कि पक्षियों और जीव जंतुओं को भी नया आश्रय देगा। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बीजों को ऐसे स्थान पर ना डालें जहां लोगों की आवाजाही अधिक हो या निर्माण कार्य होने की संभावना हो। बीजों का चयन भी स्थानीय जलवायु के अनुसार होना चाहिए। सखियों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए आपकी सखी सोनिका को इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम महिला जगत, आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हालांकि कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, तो चलिए आइए साथ में मिलके जानते हैं कि लोगों के क्या हाल है, मौसम ने क्या कमाल कर रखा है, और साथ में सुनते हैं उनकी फरमाइशें।
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो फरमाइश में। बताइए क्या नाम है आपका।
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
0: जी बताइए कैसे हैं आप और क्या करते हैं।
1: जी हम बहुत अच्छे हैं। हम और आप कैसे हो।
0: जी हम भी बहुत बढ़िया हैं।
1: और वैसे खेती बाड़ी करते हैं।
0: अच्छा खेती बाड़ी करते हैं, तो बताइए क्या असर है मौसम का आपकी फसलों पर।
1: जी अभी तो फसल का इंतजाम है, अभी तो बारिश का इंतजार है।
0: बारिश का इंतजार है, तो कब तक लगता है बारिश, कब तक आ जाएगी।
1: बारिश तो जून में है,
0: तो और तब तक पानी वानी कैसे देंगे आप अपने खेतों में।
1: खेतों में नहीं, बारिश में फसल होती है ना, मक्का और सोयाबीन।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप आज।
1: फिल्म है तेरे नाम।
0: जी
1: गाने के बोल हैं ओल्ड नहीं ओल्ड के नाचू।
0: जी ठीक है, कॉल करने के लिए धन्यवाद। सुनते हैं आपका एक।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हेलो फरमाइश में। बताइए, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: जी, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: अच्छा, चलिए ठीक है। तो बताइए, कैसा है मौसम वहाँ का?
0: जी, इस तपती हुई धूप में थोड़ी सी राहत मिल जाए अगर आकाश होने अलवर में हमारा कोई शामिल हो जाए। काफी गर्मी है यहाँ पे दीदी।
1: जी जी तो वैसे आप करते
0: जी,
1: क्या है प्रेम?
0: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और
1: ओके,
0: एक भजन गायक भी हूँ।
1: भजन भी गाते हैं?
0: जी हाँ, हमारा ग्रुप बना हुआ है 8 लोगों का। उसमें हम 4 लोग गाने वाले हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं, 2 एक ढोलक और 1 तबला बजाते हैं।
1: अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो भक्ति में रुचि है आपकी?
0: जी बिल्कुल, भक्ति में रुचि है, ईश्वर को मानते हैं और हमेशा ईश्वर के चरणों में रहते हैं और हमें महाकालेश्वर बाबा

0: के दरबार में रहने का मौका मिला, उनके चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं।
1: चलिए तो बहुत अच्छी बात है। और बताइए मौसम कैसा है वहाँ का?
0: जी 43 से 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे, और गर्म तेज हवाएं भी चल रही है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बस घर में बैठे रहो, आकाशवाणी सुनते रहो और कार्यक्रम का लुत्फ उठाते रहो।
1: जी लेकिन गर्मी बहुत ही ज्यादा हो रखी है, तो आपकी फसलों को इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है ना?
0: नहीं, जैसे अभी तो फसल कुछ भी नहीं है खेत में, अभी गर्मी के सीजन में तो केवल थोड़ा बहुत पशुओं के लिए चारा लगा रखा है।
1: अच्छा।
0: और बाकी खेत में सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में जब बरसात होगी ना,
1: जी
0: उस समय पे। और अभी जैसे कि गेहूं और लहसुन की फसल लगाई थी हमने, तो वो तो हम दो ढाई महीने पहले ही काट के घर ले आए हैं।
1: अच्छा।
0: जब से मतलब गर्मी स्टार्ट होती है ना, उससे पहले फसल की कटाई हो जाती है। अभी खेत कुछ समय के लिए खाली पड़े हैं हमारे।
1: जी हाँ, इस समय अगर कुछ लगाएं भी तो भी गर्मी इतनी ज्यादा है कि उस वहाँ पर काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ये आपने अच्छा कर रखा है कि आप। तो बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
0: जी फिल्म का नाम है मिस्टर बेचारा और गाने के बोले साथी मेरे सुन तो जरा लेंगे हजारों जन्म।
1: चलिए ठीक है, कॉल करने के लिए धन्यवाद। हम अभी आपको आपका गाना सुनवाते हैं।
2: साथी मेरे सुन तो जरा।
3: हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। तुम चुप क्यों हो गए? बोलो बोलो ना।

0: नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो फरमाइश में। बताइए कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसे हो?
1: जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और बताइए क्या चल रहा है, क्या करते हैं आप?
0: मैं तेजपाल कुमार कार बोल रहा हूँ मैडम।
1: अच्छा जी, बोलिए।
0: हाल फिलहाल गर्मी पड़ रही है मैडम, तापमान ज्यादा है।
1: जी तापमान तो बहुत है, आप ये बताइए आप करते क्या है?
0: मैडम असल में बेरोजगार हूँ, लेकिन पापा मिट्टी के बर्तन बनाते हैं।
1: आपके पापा कुमार हैं, तो आप अपने पापा की सहायता क्यों नहीं करते हैं?
0: सहायता करते हैं, बर्तन को धरवाते हैं।
1: बनाते क्यों नहीं, बनाना क्यों नहीं सीखते? बनाना भी बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी कला है, हर कोई नहीं सीख पाता।
0: मैडम मेहनत ज्यादा है, लागत ज्यादा है।
1: मेहनत ज्यादा है? अच्छा, तो मेहनत करने से कतराते हैं आप?
0: नहीं कतराते मैडम, लेकिन लागत ज्यादा, ईंधन की कमी है। वो ईंधन कहाँ से लाए मैडम, बताओ आप।
1: ये बात तो है, ईंधन की कमी तो हो गई है।
0: मैडम बारिश होते नहीं है, बारिश पेड़ जो जो पेड़ पहाड़े जो पर्वत जो नंगे होते जा रहे हैं मैडम, नंगे अवस्था में क्या करें मैडम।
1: तो फिर भी आपने कुछ और करने का ट्राई नहीं करा?
0: उस थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं मैडम।
1: गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं?
0: हाँ कर लेते हैं थोड़ी हल्की भर्ती मैडम।
1: अच्छा, फिर भी थोड़ा कुछ करिए, बेरोजगार व्यक्ति देश के लिए थोड़ा खतरनाक होता है, पता है ना आपको?
0: हाँ मैडम पता है मैडम।
1: तो चलिए बताइए कौन सा गाना सुनवाऊं मैं आपको आज?
0: मैडम कुछ कुछ मूवी का टाइटल सॉन्ग।
1: चलिए ठीक है, कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो बहन जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो फरमाइश में। बताइए कैसे हैं
0: बहन
1: आप?
0: जी बहुत बढ़िया हूँ बहन जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं जी।
1: जी, तो क्या नाम है आपका वैसे?
0: मेरा नाम है बहन जी जगदीश राय गर्ग,
1: जी जगदीश
0: और
1: जी।
0: मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से बोल रहा हूँ।
1: जी तो बताइए, पंजाब में गर्मी किस तरह की हो रही है?
0: बहन जी गर्मी तो अपने पूरे जौबन पे चल रही है,
1: जी गर्मी बहुत ज्यादा है।
0: खूब गर्मी पड़ रही है। 45 डिग्री अब तापमान हो चुका है,
1: जी
0: घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है।
1: जी जी बिल्कुल, 12 से 4 तो इतना खतरनाक टाइम है कि आप बिल्कुल बाहर ही नहीं निकले।
0: बिल्कुल जी, 12 से 4 बजे तक तो जैसे बाजारों में ऐसे लगता है जैसे कर्फ्यू लगा हो।
1: जी कोई नहीं दिखता।
0: कोई बड़ा ही ज्यादा ही जरूरी किसी को काम हो जाए, किसी को दवा लानी पड़ जाए, तो ऐसा कोई जरूरी काम हो जाए तो भले ही कोई नजर आ जाए, नहीं तो बस ऐसे लगता है सड़कें सूनी हो गई हैं।
1: जी बिल्कुल, इतनी ज्यादा जोर की धूप है और इस टाइम पे बाहर निकलना सेहत से खिलवाड़ करने की तरह है।
0: बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल खिलवाड़ करने की तरह है। सुबह शाम जो भी है अपने काम निपटा लो बस।
1: जी अब तो मतलब शाम को भी लू वगैरह चलती रहती है, शाम को भी निकलना फिर वैसा ही हो रखा है जैसे 2 बजे निकल रहे
0: हाँ
1: हो।
0: बिल्कुल, सुबह बस 9 बजे तक अगर कोई काम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बस दिन में तो मुश्किल ही मुश्किल आएगी।
1: जी तो बताइए क्या फरमाइश है आपकी आज?
0: बहन जी फिल्म है कन्यादान,
1: एक मिनट।
0: उसमें एक रफी साहब जी का गाया गीत है, उस गीत के आगे एक शेर है रफी साहब जी की आवाज में, मेरी इच्छा है कि मैं उसको गुनगुना के बता दूं।
1: जी।

0: जी, बहुत ही अच्छा गाया आपने।
1: तो ये गीत बहुत प्यारा गीत है, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, ये नसीब जगमगाते तो कुछ और बात होती।
2: उनके जुल्फ

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश में आपका बहुत स्वागत है।
0: धन्यवाद दीदी।
1: तो क्या नाम है आपका?
0: मेरा नाम सावनकर गंगाधर है, नांदेड़ से, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ आपसे।
1: चलिए बताइए, कैसा मौसम है महाराष्ट्र में?
0: धूप है दीदी, बहुत धूप है।
1: सारी जगह ही धूप है, ठंड कहाँ पर है फिर?
0: हाँ ठंडा भी वो कश्मीर में होगी दीदी।
1: कश्मीर में होगी?
0: हाँ हाँ
1: चलिए,
0: क्योंकि बर्फीले एरिया रहता, वो बर्फ गिरते रहता, वहाँ रहूंगा।
1: हाँ पहाड़ों में भी होगी इस टाइम थोड़ी बहुत, तो
0: शिमला में होंगी ठंडी।
1: जी, एक बार अपना नाम फिर से बताएंगे।
0: सावनकर गंगाधर।
1: सावनकर?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: बड़ा ही यूनिक नेम है आपका।
0: जी जी, घर का नाम है सावनकर, मेरा नाम है गंगाधर।
1: अच्छा तो बताइए क्या काम करते हैं आप?
0: मैं एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में काम करता था, अभी रिटायरमेंट हूँ मैं।
1: अच्छा, एग्रीकल्चर, कौन सा एग्रीकल्चर?
0: प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, वो तो मंडी की, मंडी में ऑफिस रहता था।
1: अच्छा,
0: जो किसानों बहुत से माल जो खेतों में पैदा करते ना, वो माल हमारे मंडी में आता है।
1: अच्छा,
0: फिर वहाँ जो बीट होती है उसका रेट होता है।
1: जी,
0: रेट इस पर किसानों को पेमेंट किया जाता है।
1: अच्छा, तो आप होलसेल पे किसानों से सब्जियां वगैरह खरीदते हैं ना?
0: सब्जियां नहीं, तुम्हारे धान, उड़ीद, मूंग, कपास,
1: ओके,
0: ये कुछ व्यापारी करते हैं, हम उन पे देख रेख करते हैं।
1: अच्छा, ठीक है।
0: गवर्नमेंट का टैक्स लेते हैं उनके पर, व्यापारियों के पर।
1: ओके, तो बताइए कैसा चल रहा है आपका काम?
0: अभी तो रिटायरमेंट है, अभी तो घर पे आराम कर रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं। आपकी अलवर का प्रोग्राम बहुत अच्छे रहते हैं।
1: आपको अच्छा लगता है हमारे अलवर का प्रोग्राम?
0: बिल्कुल बिल्कुल अच्छे लगते हैं।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप जो जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं?
0: लैंग्वेज बोलते कौन सी दीदी?
1: जैसे आपका जो एक्सेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लोगों से, तो
0: ये मराठी हमारा मातृभाषा है। मराठी?
1: मराठी है ना, तो ये थोड़ा आपका आपकी हिंदी में भी थोड़ा मराठी एक्सेंट है।
0: ऐसी चलती है जरा, हर देश में ऐसी चलती है, जहाँ तेलंगाना में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है,
1: तो आप
0: यूपी में
1: आप
0: अलग
1: मुझे
0: है।
1: कुछ मराठी में कुछ बोलना सिखाइए ना।

0: मराठी मध्ये देखो मुझे मला एक गीत कार्यक्रमामध्ये टाका, तो एक गाना मुझे सुना दीजिए बोले
1: जी। बताइए कौन सा गाना सुना?
0: तेरे नाम।
1: तेरे नाम टाइटल सॉन्ग?
0: नहीं, तुमसे मिलना, बातें करना।
1: अच्छा लगता है?
0: बड़ा अच्छा लगता है।

0: नमस्कार, स्वागत है हेलो फरमाइश में। बताइए कैसे हैं आप और क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार दीदी, ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: मध्य प्रदेश से?
1: जी
0: चलिए बताइए भगवान जी क्या काम करते हैं आप?
1: दीदी खेती किसानी करते हैं, किसान है दीदी।
0: और खेती बाड़ी सही चल रही है आपकी?
1: जी दीदी अभी तो गर्मी है हमारे इधर, तो अभी तो खेत खाली पड़े हुए हैं, तो ज्यादा कुछ काम है नहीं अभी दीदी।
0: जी जी, खेत खाली रखना अभी इस टाइम पे बहुत सही काम है क्योंकि
1: जी
0: गर्मी
1: जी
0: बहुत ही ज्यादा है। और बताइए कैसे हैं सब घर में आपके?
1: घर में सब आनंद मंगल में है दीदी, बढ़िया गर्मी का आनंद ले रहे हैं सभी।
0: अच्छा चलिए अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताइए, आप इस बात में मतलब अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जो दुकान से लाते हैं अपन फर्टिलाइजर्स केमिकल वाले, वो ज़्यादा
1: जी
0: हमारी फसल के लिए सही होते हैं या फिर जो हम नेचुरल खाद जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादा सही रहती है?
1: दीदी मैं एक किसान होने के नाते आपको बताना चाहूँगा, जो दुकान पे से लाते हैं
0: जी
1: वो सभी मतलब इंसान के लिए हानिकारक रहते हैं दीदी। खाने में उपयोग में केमिकल का इस्तेमाल जब करते हैं अपन, गेहूँ सोयाबीन किसी में भी दीदी, तो वो शरीर के लिए हानिकारक रहता है दीदी।
0: जी
1: और गोबर का खाद जैसे मवेशियों का रहता है दीदी, ये बहुत लाभकारी रहता है फसल के लिए।
0: जी तो आप अपने खेत में वही यूज करते हैं?
1: दीदी हमें ना तो ये हमारे पास मवेशी है, तो गोबर का खाद का इस्तेमाल करते हैं, बाकी थोड़ा बहुत ये लिक्विड वाला जो रहता है ना केमिकल वाला, इसको भी करते हैं दीदी।
0: अच्छा लेकिन इसकी कोई मात्रा डिसाइड होती होगी ना कि अगर आप इतने से कम में, अगर इतने के भीतर अगर आप छिड़कते हैं तो नहीं होगी बीमारी, अगर आप ज्यादा उसकी लिमिट बढ़ा देंगे तो फिर वो ज्यादा नुकसान करेगा?
1: दीदी किसान तो है ना बहुत खाद डालता है, पहले की अपेक्षा में अब दूना खाद डालता है।
0: और वो ऐसा क्यों करता है?
1: उसमें क्या है दीदी, फसल की उत्पादन ज्यादा होता है ना, दूना उत्पादन होता है, इसलिए ज्यादा खाद डालते हैं अब।
0: अच्छा
1: लेकिन वो ये नहीं, उसका परिणाम सही नहीं होता दीदी फसलों, मतलब खाद तो पैदावार ज्यादा ले लेते हैं लेकिन जब खाने में उस चीज को यूज करते हैं दीदी, तो वो शरीर पे बहुत ज्यादा हानिकारक रहता है।
0: जी जी, उससे तबीयत वबीयत खराब।

0: सकती है ना।
1: जी जी जी जी
0: चलिए, आप अपने खेत में लेकिन खाद ही यूज करना है ना।
1: दीदी अब हमारे पास इतने ज्यादा मवेशी नहीं है, आधी जमीन तो हम खाद में मतलब फेंक देते हैं, फिर आधी जमीन के लिए हमें ये खाद लाना पड़ता है केमिकल वाला।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप आज।
1: जी दीदी आप सुना दीजिए, आज फिल्म का नाम है संग।

तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ फरमाइशें। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये गाने पसंद आए होंगे। आप लोगों से फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है।

0: FM एंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।
1: खिलाड़ी खेलों का आईना।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको अवगत करा दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों और उन

अब से कुछ ही देर में अर्थात 6:10 पर और शाम 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार 6:30 पर और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर। शाम 7 बजे कार्यक्रम ग्राम भारती।

लोक संगीत आप सुनेंगे 8:15 पर। समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे 8:45 पर। और अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे रात 9:00।

रात्रि 9:15 से रात 11 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। और हमारी आज की सभा संपन्न होगी रात 11:05 पर।

कल की सभा में हम आपसे मिलेंगे प्रातः 5:56 पर। हिंदी में समाचार होंगे प्रातः 6:00। 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। रामचरितमानस का समय रहेगा 6:35। कार्यक्रम संगीत सरिता 6:45 पर।

कार्यक्रम नमस्कार अलवर प्रातः 7 बजे 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात का समय रहेगा प्रातः 8 बजे 8:15 पर सुगम संगीत।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 8:30 पर। आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे प्रातः 9 बजे। 9:10 से शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

शाम 5 बजे महिलाओं का कार्यक्रम महिला जगत, 5:30 पर कार्यक्रम युवाणी, शाम 6 बजे हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

0: जो मेहनत से देश सजाए, ईएसआईसी हर कदम पर साथ निभाए। सुख हो या संकट की घड़ी, ईएसआईसी साथ है हर घड़ी।
1: 1952 से आज तक ईएसआईसी बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी, हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
0: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
1: ईएसआईसी 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।

तेजा फिल्म में आप सुन रहे थे नितिन मुकेश, शब्बीर कुमार और अलका याग्निक को, और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 MHz पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: 607 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून से शुरू होगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। राज्य में तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज श्रीगंगानगर में दिन का पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर, फलौदी, पिलानी, बीकानेर और चूरू में तापमान 46 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। राज्य के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। दिन के समय तेज तपिश के साथ लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल रही है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा में सबसे गर्म रात रही। भीषण गर्मी से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। इस बीच प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य लेकर चलने को कहा है। सिरोही में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों की दिनचर्या बदल रही है। झुंझुनू से हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी से जिलेवासियों का हाल बेहाल है। दिन के समय बाजारों में लोगों की चहल पहल कम नजर आ रही है।
1: झुंझुनू में नौतपे का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे तेज गर्मी और लू ने आमजन का हाल बेहाल कर दिया है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बढ़ते तापमान और लू के प्रभाव को देखते हुए प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ का सेवन करने, बच्चों, बुजुर्गों और अस्वस्थ व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखने तथा अत्यधिक धूप में बाहर निकलने से बचने को कहा है। साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की है। इधर मौसम केंद्र जयपुर ने कल श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी कई जिलों के लिए तेज गर्मी के साथ आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने कुछ रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची VVPAT से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि ये तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि विद्यार्थी कानून की शिक्षा का उपयोग जरूरतमंदों, पीड़ित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए करें। उन्होंने कानून की शिक्षा में राष्ट्र और समाज हित को हमेशा आगे रखने का आह्वान किया। श्री बागड़े आज जयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधि शिक्षा में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का समावेश किया जाए तो सभी क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश के नागरिक को न्याय दिलाने के लिए पुराने कानून बदलकर 3 नए कानून लाए गए हैं। इस दौरान 9 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, वहीं 25,000

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में। श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री के ऊपर पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वैध बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने को मंजूरी दी और आरपीएससी ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा के

0: से अधिक विद्यार्थियों की ऑनलाइन डिग्रियां सौंपी गई। करौली जिले में पिछले 12 वर्ष में पानी की समस्या के हल के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। जिले की मासलपुर तहसील की भावली ग्राम पंचायत के किसान सवाई सिंह ने बताया कि तालाब निर्माण कार्य से जल संरक्षण के काम को मजबूती मिली है। केंद्र सरकार की इस पहल से क्षेत्र में हुए वर्षा जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप भूजल स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है।
1: मेरा नाम सवाई सिंह है। इस तालाब से हमको सुविधा है। इस तालाब से पहले पानी बह नहीं जाता, पानी अब ढट गया है। उससे मवेशी को सुविधा भी है और जमीन में जल स्तर बढ़ गया है। बाद किसानों को सुविधा है और बढ़िया काम में आ रहा है और बढ़िया सरकार को धन्यवाद देते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी।
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय परिवहन और हैंडलिंग के खर्च में केंद्रीय सहायता के नियमों में बदलाव किया है। इसके साथ ही राशन दुकान के डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए भी सहायता मानदंडों को संशोधित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल रात बीकानेर में भारत पाक सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में हर सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला लिया गया। गृह मंत्री ने अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर तक के दायरे में हो रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। गृहमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य सरकार को मिलकर रणनीति बनाने को कहा ताकि घुसपैठ, तस्करी, अतिक्रमण और अन्य सीमा पार अपराधों पर शिकंजा कसा जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2026 के तहत कुल 607 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। इनमें राज्य सेवाओं के 192 और अधीनस्थ सेवाओं के 415 पद शामिल हैं। इस भर्ती के संबंध में विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आयोग सचिव ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 जून से शुरू होंगे। ये आवेदन 3 जुलाई रात्रि 12 बजे तक किए जा सकते हैं। परीक्षाओं का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर 9 जनवरी को ही जारी कर दिया गया था। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आज जोधपुर में बीज उत्पादक कंपनियों और फैक्ट्रियों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी मात्रा में अमानक बीज जब्त करवाए। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि घटिया बीजों से किसानों और निर्यात प्रक्रिया को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बरामद किए गए बीजों की जेनेटिक शुद्धता जांचने के लिए ग्रो आउट टेस्ट GOT करवाया जाएगा।
3: तकरीबन 50 करोड़ का यह सीड है जो पूरी तरह से असली सीड नहीं है, घटिया मूंगफली है जिसको किसानों को बेचा जाएगा। हम इसकी सेल रोक रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में सेल रोक के इसके सैंपल लेंगे और सैंपलों की जो GOT भी कराएंगे और लेबोरेटरी से जांच भी करेंगे।
0: राज्य में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर लोगों को इससे जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रमों की

कड़ी में आज गौशालाओं, पशु चिकित्सालयों और दुग्ध संघों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और गौ संरक्षण से जुड़े काम किए जा रहे हैं। जोधपुर में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने, वहीं पाली में प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गौशालाओं में वृक्षारोपण किया और पंछियों के लिए परिंडे बांधे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में राहत देने से इनकार करते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट के जोधपुर पीठ के जस्टिस अरुण मूंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की बेंच ने आज ये फैसला सुनाया। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। अदालत ने उसे आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में। श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री से ऊपर पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वैध बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दी और आरपीएससी ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा के 607 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून से शुरू होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मैना देवी ने तैयार किया है। राज्य के उत्तरी भाग में स्थित कृषि प्रधान जिला है हनुमानगढ़। घग्गर नदी के किनारे बसा ये जिला उपजाऊ भूमि के साथ ही प्राचीन संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसी नदी के तट पर स्थित है भटनेर किला, जो काफी पुराना और मजबूत मिट्टी से बने किलों में से एक है। इंदिरा गांधी और भाखड़ा नहर के कारण इस क्षेत्र में गेहूं, सरसों और कपास की अच्छी खेतीबाड़ी होती है। इस जिले को फलों की टोकरी भी कहा जाता है। जिले की चिट्ठी में आप तक पहुंचाएंगे बीते दिनों की खास खबरें। सबसे पहले बात किसानों की। जिले में करीब 2025 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 108 करोड़ रुपए से अधिक का बीमा क्लेम जारी किया गया। खरीफ फसल की प्राकृतिक आपदाओं और कीटों से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ये राशि सीधे बैंक खातों में जमा की गई। जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने बताया कि किसान अपने बीमा दावे की स्थिति की जानकारी फार्मर कॉर्नर के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर भी इस बारे में जानकारी ली जा सकती है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि इस भुगतान से किसानों को बड़ी राहत मिली है। इससे उन्हें आगामी खेती के लिए भी वित्तीय मजबूती मिलेगी। जिले में पिछले दिनों ग्राम रथ अभियान की धूम रही। इस अभियान के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर लोगों को सरकार की जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मैना वाले गांव पहुंचकर ग्राम रथ का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत भी की। श्री पूनिया ने संगरिया क्षेत्र के शेरेका गांव में संध्या चौपाल में शिरकत की। चौपाल में ग्रामीणों ने बारदाना, फसल तुलाई और एमएसपी से जुड़ी समस्याएं उनके सामने रखी, जिस पर श्री पूनिया ने उचित समाधान का आश्वासन दिया। गंगा दशमी के मौके पर जिले में बारिश के पानी को सहेजने, जल स्रोतों की सफाई और मरम्मत करने तथा पानी की बचत की अलख जगाने वाला अभियान शुरू हुआ। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम रावतसर के लखू वाली हेड पर हुआ, जहां माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक, जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर जोगाराम और जिला कलेक्टर डॉक्टर यादव ने जल पूजन कर और पौधा रोप कर अभियान का शुभारंभ किया। जिले में हीटवेव से बचाव के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें हनुमानगढ़ जंक्शन और बस स्टैंड पर यात्रियों और कर्मचारियों को ओआरएस के पैकेट बांटे गए। स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से लोगों से लगातार तरल पदार्थों का सेवन करने और धूप से बचने की सलाह दी गई। वहीं प्रशासन की ओर से जिले भर में प्याऊ और परिंडे लगाने का अभियान भी शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर में परिंडे बांधकर इसकी शुरुआत की। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में 13 जून तक

0: अवकाश रहेगा। बच्चों को दिया जाने वाला पोषाहार भी टेक होम राशन के रूप में घर घर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही हीटवेव के बढ़ते असर को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रचंड गर्मी के इस दौर में चिकित्सकों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। उधर जनगणना प्रक्रिया में लगे प्रगणकों को भी लू और तापघात से बचाव के लिए इंतजाम रखने का परामर्श दिया गया है। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों पीलीबंगा के एक वार्ड का औचक निरीक्षण कर जनगणना प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने लोगों से गणना कर्मियों को सही जानकारी देकर राष्ट्रीय महत्व के इस काम में सहयोग करने की अपील की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदीलाल मीणा ने भी रावतसर, नोहर, भादरा और टिब्बी सहित कई क्षेत्रों में निरीक्षण कर जनगणना काम संबंधी व्यवस्थाएं जांची। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पिछले दिनों जिले के अयालकी गांव पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का शिलान्यास किया। ये भवन करीब 4.5 करोड़ रूपए की लागत से बनाया जाएगा। श्री दिलावर ने जिले के कई स्कूलों का मुआयना किया। उन्होंने शिक्षकों से नवाचार और नैतिक संस्कार विकसित करने की बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। कई सरकारी स्कूल निजी विद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले में सड़क हादसों में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले 9 गुड सैमरिटन को प्रशस्ति पत्र और 80,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत ये राशि मददगारों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। इसके साथ ही हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रदेश रा घनघर हलका माए जबरदस्त तावड़ा बीच लू रो असर। श्री गंगानगर माए पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्टारा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR ने वैध बतायो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामला री समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली रातेत राशन लावण ले जावण और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS ने जारी रखण री मंजूरी दीनी। और RPSC राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवारा 607 ओहदा माथे भर्ती सारू विज्ञप्ति जारी कीनी। ऑनलाइन तरीकों अर्जियां देवन रो काम 4 जून सरू भैला। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राज्यरा घनखर हलका माए जोरदार तावड़ो पड़ रियो है और लू बाज रही है। आज श्री गंगानगर माए सब बत्तो 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान नापीचियो। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, पिलानी और फलौदी माए अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा समेत कई ठोणा कम से कम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ऊंचो चाल रियो है। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सागे कोटा माए रात्रि बगती जोरदार गर्मी रही। इन बीचे प्रशासन री ओरू गर्मी रो सामोकरण सारू जरूरी इंतजाम करया जा रहा है। भीलवाड़ा माए जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू सगला महकमा ने तालमेल सागे काम करण बाबत कहो। लूरी फेंट माए आया मरीजा सारू अस्पताल माए न्यारी व्यवस्था राखण रा हुकम दिया चिया है। सिरोही जिला माए तेज तावड़ा और उन्ना बायराऊ जिंदगी माथे घणो असर पड़ रियो है। माणा झुंझुनू खबर नवीस बतायो के जोरदार तावड़ाऊ दिन री भगत बाजारा माए लोगा री आवन जावन कम वेगी है।
2: झुंझुनू में नौतपे का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे तेज गर्मी और लू ने आमजन का हाल बेहाल कर दिया है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू।
1: इन बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बढ़ती गर्मी और लू रा असर न ध्यान रखता थका जनताओं सावचेती राखण री अरज कीनी है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री शर्मा जनताओं जरूरी मात्रा माए पानी और पीवन री दूजी चीजा काम लेवन बाबत कहो। वे बच्चा, बुजुर्गा और मंदा लोगा रो खास ध्यान राखण और जोरदार तावड़ा री बगत

0: कठै नी जावन सारुई कहो। मुख्यमंत्री परिंदा और जिनावरा सारुई दाना पानी और चारा री व्यवस्था करण रियरज की नी। मौसम केंद्र जयपुर काल श्रीगंगानगर बीकानेर फलौदी और जैसलमेर जिला माए लू बाजन सारू चेतायो है। इसागे कई जिला माए तेज गर्मी सागे आंधी बारिश सारुई चेताई चियो है। सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग कानून वोटर लिस्टारी विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया री वैधता बरकरार रखी है। अदालत कहो कि एसआईआर रो मकसद स्वतंत्र और निपक्ष चुनाव करावनु हो। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागचीरी पीठ लाडला साल जून महीना माए चुनाव आयोग कानून बिहार माए एसआईआर करावन री अधिसूचना ने चुनौती देवन वाली अर्जियां माथे सुनवाई करता थका वो फैसलो सुनायो। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर ने पूरी तरह कानूनी करार देवन रा सुप्रीम कोर्ट रा फैसला रो स्वागत कीनो है। सुप्रीम कोर्ट मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची वीवीपैट उन जुड़िया दिशा निर्देशां माए बदलाव री मांग करण वाली अर्जियां माथे सुनवाई कीनी। अदालत कहो कि इन बारा माए फैसलो लेवन रो हक चुनाव आयोग ने है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कानून री भणाई जरूरतमंद लोगां पीड़ित और वंचित तबका रा भला सारू काम लेवन बाबत कहो है। वह कानून री भणाई माए देश और समाज रा भला ने हमेशा ऊंचो राखण री अपील कीनी। श्री बागड़े आज जयपुर माए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय रा तीजा दीक्षांत समारोह माए बोल रहा हा। राज्यपाल कहो कि कानून री भणाई माए देश री सभ्यता और संस्कृति शामिल करणु कई हलका माए कामयाबी मिल सके है। इस मौके केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो कि जनता ने न्याय दिरावन सारू जूना कानून बदल और तीन नुआ कानून लाई चिया। कार्यक्रम माए नौ विद्यार्थियों ने सोना रा तमगा देर नवाजी चिया जबकि 25,000 बत्ता विद्यार्थियों ने ऑनलाइन डिग्रियां तीरी ची। करौली जिला माए लाडला 12 साल माए पानी री समस्या सुलझावन सारू न्यारी न्यारी कोशिशां करी ची है। जिला री मासलपुर तहसील री भावली ग्राम पंचायत माए तलाव बनावण पानी बचावण रा काम ने मजबूती मिली है। काम वाला रो कहणो है कि केंद्र सरकार री पहलू हलका माए बिरखारो पानी भेड़ो भेवण जमी हेठे पानी रो लेवल ली ऊंचो आ रियो है।
1: मेरा नाम सवाई सिंह है। इस तालाब से हमको सुविधा है। इस तालाब से पहले पानी बेची जाता है, पानी अब घट गया है, उससे मवेशी को सुविधा भी है और जमीन में जल स्तर बढ़ गया है, बाद किसानों को सुविधा है और बढ़िया काम में आ रहा है और बढ़िया सरकार को धन्यवाद देते हैं।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामला री समिति आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली रा तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस न जारी राखण री मंजूरी दे दीनी। इसारू 25,530 करोड़ रुपया राखी चिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली माई खबर नवीसा ने आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि इन योजनाओं राज्यां री एजेंसियां ने एक उन दूजा राज्य माए अनाज लावण ले जावण माए मदद मिलेला।
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत पाक सरहद माथे हिफाजत रा और पुख्ता इंतजामात करण सारू काल बीकानेर माए सुरक्षा समीक्षा बैठक कीनी। मीटिंग माए सरहद कनेरा हर जिला सारू चार ही मेर निजर राखण वालो सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करण रो फैसलो करी चियो। गृह मंत्री अंतर्राष्ट्रीय सरहद 15 किलोमीटर ताई रा हलका माए गैर कानूनी बनाई चुनाई ने रोकण रा हुक्म दीना। वह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 ने असरदार तरीकों लागू करण मथे जोर दीनो। गृहमंत्री घुसपैठ तस्करी अतिक्रमण और सरहद पार होवण वाला अपराधा मथे रोक लगावण सारू बीएसएफ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और राज्य सरकार ने मिलर रणनीति बनावण सारू ही कहो।

0: राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2026 रा तहत 607 ओहदा माथे भर्ती री अधिसूचना जारी करतीनी है। इनमाए राज्य सेवा वारा 192 और अधीनस्थ सेवा वारा 415 ओहदा शामिल है। भर्तियों जुड़ी विगतवार जानकारी आयोग री वेबसाइट माथे देखी जा सके है। आयोग रा सचिव बतायो के आ ओहदा सारू ऑनलाइन तरीका अर्जियां 4 जून 3 जुलाई 2026 री रात 12 बजे ताई दी जा सकेला। ई परीक्षा रो कोर्स आयोग री वेबसाइट माथे 9 जनवरी नई जारी करतियो छियो हो। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज जोधपुर में बीज कंपनियां और कारखाना री औचक जांच कीनी। इन दौरान मोटी तादाद में अमानक बीज जब्त करी जिया। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका डॉक्टर मीणा कहो के बरामद करी जिया बीजा री जेनेटिक शुद्धता री जांच सारू ग्रो आउट टेस्ट GOT करायो जावेला।
1: तकरीबन 50 करोड़ का यहाँ सीड है जो पूरी तरह से असली सीड नहीं है, घटिया मूंगफली है जिसको किसानों को बेचा जाएगा। हम इसकी सेल रोक रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में सेल रोक के इसके सैंपल लेंगे और सैंपलों की जो GOT भी कराएंगे और लेबोरेटरी से जांच भी करेंगे।
0: राज्य में चल रहा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रा तहत आज गौशालावां ढंडारा अस्पतालां और दूध उत्पादक संघा में खास अभियान चलाई चियो। इन दौरान पानी पर्यावरण और गायां ने बचावन जुड़िया काम करी चिया। जोधपुर में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और पाली में प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा गौशालावां में पौधा रोपिया और परिंदा सारू परिंडा बांधिया। सवाई माधोपुर भीलवाड़ा जैसलमेर सिरोही और सलूम्बर माई न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। राजस्थान हाईकोर्ट आसाराम बापू ने नाबालिगों यौन दुराचार रा मामला माय साता देवन उन्नट गयो है। हाईकोर्ट री जोधपुर पीठ रा न्यायमूर्ति अरुण मुंगा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित री बेंच आज मारी सजा बनाई राखन रो फैसलो सुनायो। कोर्ट आसाराम समेत 3 दोषियों री अपील माथे सुनवाई करता थका कहो कि निचली अदालत कानून सुनाई जी सजा माय कोई बदलाव नहीं करियो चावेला। हालांकि अदालत वाने पोक्सो कानून रा तहत मिलर यौन दुराचार करण, यौन उत्पीड़न करण और आपराधिक साजिश जुड़िया आरोपों बरी करती नो। आईपीएल क्रिकेट होड में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद बीच एलिमिनेटर मुकाबलो खेलू जावेला। अब थोड़ी देर पछे 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में शुरू होने वाला ये मुकाबला में जीतने वाली टीम शुक्रवार ने दूजा क्वालिफायर मुकाबला में गुजरात टाइटन्स सागे मैच खेलेला। होड़ रो फाइनल मुकाबलो 31 मई ने अहमदाबाद में खेलो जावेला। इन पहली काल खेली जा क्वालिफायर मुकाबला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटन्स ने 92 रन हरार फाइनल में पूग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात में 31 मई ने विचार बतावेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1-800-117-800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। आखिर में खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रदेश रा घणखर हलका में जबरदस्त तावड़ा बीच लू रो असर। श्री गंगानगर में पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्टा रा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR ने वैध बतायो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामला नी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली रा तहत राशन लावण ले जावण और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS ने जारी राखण री मंजूरी दीनी। RPSC RAS रा 607 ओहदा माथे भर्ती सारू विज्ञप्ति जारी कीनी। ऑनलाइन तरीकाउं अर्जियां देवण रो काम 4 जून नु शुरू भेला। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थयो। नमस्कार।
2: आकाशवाणी अलवर का ये सरीस का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम भारती।

ग्राम भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को शुभदयाल भाई की तरफ से बहुत बहुत घनी घनी राम राम। किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे मछली पालन एक सफल लघु उद्योग। आपको संदेश सुनवाएंगे और आपका करवाएंगे मनोरंजन। एक भेंटवार्ता सुनवाएंगे आपको उन्नत मछली पालन और जानकारी देंगे मछलियों में होने वाले रोग और उनका निदान हमारे किसान भाई कैसे करें। तो आइए सबसे पहले आपसे चर्चा करते हैं मछली पालन एक सफल लघु उद्योग। मछली जलीय पर्यावरण पर आश्रित जलचर जीव है तथा जलीय जो पर्यावरण होता है उसको संतुलित रखने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न जल स्रोतों में चाहे उसमें तीव्र या मंद गति से प्रवाहित होने वाले जैसे नदियां हैं, चाहे प्राकृतिक झीलें, तालाब अथवा मानव निर्मित जो बड़े या मध्यम आकार के जलाशय, सभी के पर्यावरण का यदि सूक्ष्म हम अध्ययन करें तो निष्कर्ष निकलता है कि मछली और जल एक दूसरे से यानी ये काफ़ी जुड़े हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने में इनकी एक विशेष उपयोगिता होती है। मछली से हमें जैसे कई तरह के उत्पाद प्राप्त होते हैं जिसमें मांस है, मछली का तेल है, तो ये भी हमें मिलता है। हमारे शरीर में ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो कि मछली के तेल के द्वारा सही हो जाती हैं। इसके लिए मछली की मांग बहुत ज़्यादा है और क्या भारत के हर राज्य में इसको स्थान मिला है जिसमें लोग लाखों रुपये क्या इसका व्यवसाय करके कमा रहे हैं। और हमारे किसान भाई अगर ये भाई मछली पालन करें तो आप भी काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। और क्या है इसके लिए तालाब या फिर टंकी बनाकर हम मत्स्य पालन शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मछलियों के लिए तालाब तैयार करना होता है, तो उसके लिए मछली पालन उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है तालाब, वो कैसा होना चाहिए और किस जगह होना चाहिए। तालाब का चयन करते समय कुछ बात जो होती है उनका हमारे किसान भाई उनको ध्यान रखना चाहिए, जैसे पानी का जो स्रोत है वो तालाब के क्या है समीप होना चाहिए ताकि ज़रूरत जब पड़े तो उसे हम उसमें पानी वगैरह भाई डालते रहें समय समय पर। तो उसमें अनावश्यक चीज़ें जैसे भाई मेंढक है, केकड़े हैं, ये उसमें हमारे जो तालाब है उसमें नहीं होने चाहिए। जलीय पौधों से रहित दोमट मिट्टी जो होती है वो उसमें यानी तालाब, ऐसे तालाब का हमको चयन करना चाहिए। तालाब ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम 5.6 फुट तक पानी भरा रहे। यदि तालाब में जलीय खरपतवार या पौधे हों तो उन्हें क्या है उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। ये जो जलीय पौधे जो होते हैं क्या है तालाब की जो मिट्टी है और पानी में जो उपलब्ध जो भोजन एवं पोषक तत्व जो होते हैं उनको सोख लेते हैं और उससे क्या है जो मछलियों के लिए उपलब्ध जो भोजन है वो कम पड़ जाता है। तालाब में मत्स्य बीज डालने से पहले इस बात की परख हमको कर लेनी चाहिए कि उस तालाब में प्रचुर मात्रा में मछली का जो प्राकृतिक आहार जो एक प्लैंकटन काई जो होती है वो उपलब्ध है या नहीं है। तालाब में प्लैंकटन की अच्छी मात्रा करने के उद्देश्य से ये इसके लिए क्या है गोबर की जो खाद होती है उसके साथ में सुपर फास्फेट 300 किलोग्राम तथा यूरिया 180 किलोग्राम प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर के मान से हमें डालनी चाहिए। साल भर के लिए निर्धारित मात्रा अगर हम देखें तो क्या है 10,000 किलो गोबर की खाद और 300 किलो सुपर फास्फेट और 180 किलो यूरिया की 10 मासिक किस्तों में बराबर बराबर हम इसको क्या है डाल सकते हैं। इस प्रकार प्रति हम महीने की बात करें तो 1,000 किलो गोबर और 30 किलो सुपर फास्फेट और 18 किलो यूरिया का प्रयोग हम तालाब में कर सकते हैं जिससे क्या है जो प्लैंकटन जो होता है वो प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। गोबर की खाद का प्रयोग हम करें तो क्या है तालाब की तैयारी में गोबर की खाद की क्या है विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिससे मछली की लिए जो प्राकृतिक जो भोजन होता है वो उत्पन्न होता है। गोबर की खाद मत्स्य बीज संशय से 15-20 दिन पूर्व हमारे किसान भाई क्या करें सामान्यतया 10.20 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष यानी 10 समान मासिक किस्तों में प्रयोग कर सकते हैं। यदि तालाब की तैयारी में अवांछनीय मछलियों के जैसे निष्कासन के लिए महुआ की खली हमने अगर डाल रखी है तो गोबर की जो खाद है वो पहली किस्त डालने की हमें ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं हम मछलियों के बीज की, तो सामान्यतः सभी मछलियां जुलाई अगस्त में अंडे देती हैं और कॉमन कार्य नामक मछली साल में 3 बार ब्रीडिंग करती है जिसमें जीरा फ्राई और अंगुलिकाएँ में से किसी भी बीज को हम अपना सकते हैं। मत्स्य पालन के लिए अच्छी नस्ल के रोहू सिल्वर कार्प कतला मृगल और ग्रास कार्प और कॉमन कार्प ये बहुत सी नस्लें होती हैं, इनमें

0: हम कोई किसी का भी हम चयन कर सकते हैं। मछलियों के चुनाव की बात करें तो मछली पालन करके अच्छा फायदा लेना अगर हम चाहते हैं तो इसके लिए क्या है, हमें कुछ बात जो होती है उनका ध्यान रखना होता है। जिन परिस्थितियों में हम मछली पालन करना चाहते हैं उन परिस्थितियों के लिए मछली की प्रजाति कौन सी है और कौन सी मछली इन परिस्थितियों में यानी जिंदा रह सकती है, हमें अच्छा लाभ दे सकती है। अगर आप व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हैं और आपको अगर इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है तो किस नस्ल की मछली को पालन हम यानी कर सकते हैं, तो आपको शुरुआत में जैसे टूना है, सिल्वर है, क्रॉप है और रोहू है, कॉमन क्रॉप, ये जो मछलियां हैं इनको हमको सर्वप्रथम पालना चाहिए। इनकी बाजार में मांग क्या है हमेशा रहती है, और आप इनकी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो नज़दीकी अपना जो मत्स्य पालन विभाग है वहाँ जा कर के हमारे किसान भाई जानकारी ले सकते हैं। तो आइए किसान भाई, आपको सुनवाते हैं संदेश।
1: जो मेहनत से देश सजाए, ESIC हर कदम पर साथ निभाए, सुख हो या संकट की घड़ी, ESIC साथ है हर घड़ी।
2: 1952 से आज तक ESIC बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी, हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
1: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
2: ESIC 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।
3: चिंता से मुक्ति।
0: हाँ, तो किशन भाई आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता। उन्नत मछली पालन, डॉक्टर महेश सोनवाल, मत्स्य विभाग अधिकारी अलवर से भेंट वार्ता। आइए किसान भाई सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
4: किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर महेश चंद सोनवाल, जो कि मत्स्य विकास अधिकारी अलवर में कार्यरत हैं, और आज हम आपको जानकारी दिलवाएंगे उन्नत मछली पालन विषय पर। तो डॉक्टर महेश चंद सोनवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
5: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस कार्य में इन्वाइट करने के लिए। तो आपको हम मत्स्य पालन के बारे में जानकारी देंगे कि अलवर जिले में मत्स्य पालन कैसे कर सकते हैं।
4: बिल्कुल, तो हमारे जो किसान भाई हैं उनको सबसे पहले बताएं कि मछली पालन की हमारा जो ये अलवर जिला है इसमें क्या संभावनाएं।
5: जी सर, हमारे अलवर जिले में वैसे काफी संभावनाएं हैं। जैसे इस वर्ष हम देखे तो काफी अच्छी बारिश हुई है, तो सभी जलाशय भी भर चुके हैं और हमारा जो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो भी काफी ऊपर आ चुका है। तो पहले तो समस्या आती थी कि हमारे पास पानी नहीं है तो हम मछली पालन कैसे करें कैसे ना करें, लेकिन इस वर्ष ऐसी कोई समस्या नहीं है तो हम कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मणगढ़ साइड में काफ़ी अच्छा पानी है, तिजारा, टपुकड़ा और इधर साइड में। तो इसके लिए आप उन्नत जो नस्ल होती है मछली की, तो उसकी सहायता से आप अच्छा प्रॉफिट और आमदनी कमा सकते हैं।
4: बिल्कुल, तो अब हम आपसे जानकारी दिलवाना चाहें कि जो हमारे मछली पालन करना चाहें भाई, वो कौन कौन सी प्रजातियों की जो मछली हैं उनका वो पालन कर सकें उसके बारे में बताएं।
5: तो अधिकतर जो मछलियाँ जो मिलती हैं, कतला, रोहू, मृगल और ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और पंगेशियस मछली और तिलापिया वगैरह यही मिलती है। तो वैसे अच्छे यदि मत्स्य पालन यदि करना चाहिए पहली बार में, तो कतला, रोहू, मृगल इन मछलियों का पालन वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी मछलियाँ हैं कि इनमें अधिकतर मेंटेनेंस की जरूरत नहीं रहती है, और इसको खाना आराम से दोगे तो ये अच्छी बढ़वार करेगी और इतनी देखरेख की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो अधिकतर अपन 3 मछलियों का ही मत्स्य पालन स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियली, और बाद में यदि आप हायर लेवल पे जाए हो तो 6 मछलियों का भी एक साथ कर सकते हो। कटला, रोहू, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प इनका कर सकते हैं।
4: जी बिल्कुल, तो इस तरह से इन प्रजातियों के जो मछली पालन है वो आप मछली पालक भाई हैं वो कर सकें। अब हम आपसे हमारे किसान भाइयों को जानकारी दिलवाना चाहें कि मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिए आपके विभाग की क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताएं, जिससे कि हमारे भाई इस चीज़ से जुड़े और उनके बारे में पूरी जानकारी थोड़ा सा बताएं।
5: जी, हमारे विभाग में एक बहुत ही अच्छी योजना है जो भारत सरकार ने चलाई है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 20,050 करोड़ की जो योजना है, जो कि 2020 से 21 में चली थी और अब तक भी लगातार चल रही है। तो इसके लिए जैसे आपको कहीं पे भी पोंड बना के मछली पालन करना हो तो उसमें 1 हेक्टेयर की के लिए सब्सिडी होती है 4 बीघा के लिए, जिसमें आपको पोंड भी बनाना होता है और मछली के लिए दाने वगैरह रखने के लिए स्थान भी, और आपका बोरवेल वगैरह भी, और आपके जाल वगैरह और मछली के बॉक्स वगैरह सभी रखने के लिए। तो इन सभी का टोटल

0: मिला के आपको मिलेगा, यानी टोटल 7 लाख रुपए का सब्सिडी दिया जाता है। तो 7 लाख में 40 से 60% सब्सिडी मिलती है। 40% सब्सिडी सभी सामान्य वर्ग के यानी जो एप्लीकेंट होते हैं उनको मिलती है। जो 60% सब्सिडी होती है सभी जो महिलाएं जो वर्ग होते हैं, जो किसी भी जाति संप्रदाय से हो, और जो अनुसूचित जाति जनजाति और जो कोऑपरेटिव मेंबर्स होते हैं और उनको 60% सब्सिडी दी जाती है। तो यदि 7 लाख का है, यदि हम 60% देखेंगे तो 4,20,000 रुपये आपको आपके अकाउंट में मिलेगा। ये पैसा आपको पूरा काम करने के बाद में मिलता है। और भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं, जैसे कि आपको पहले वर्ष में मत्स्य पालन करना है तो उसके लिए भी आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे। यदि आपके खारा पानी है उसके लिए झींगा पालन करना है उसके लिए आपको 8 लाख रुपए मिलेंगे पर हेक्टेयर के। और उसमें प्रथम वर्ष में आपको इन्वेस्ट करना है उसके लिए आपको 6 लाख रुपए मिलेंगे। और यदि आपको खुद का मछली का बच्चा पैदा करने की हैचरी बनानी है 2 हेक्टेयर के अंदर में 10 मिलियन जो फ्राई प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी वाली, तो उसके लिए आपको 25 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो 25 लाख का यदि हम जैसे कि 60% के हिसाब से देखें तो यानी 15 लाख रुपए आपको मिलेंगे, और 40% के हिसाब से देखें तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। और मछली पकड़ने के लिए जाल और नाव वगैरह और उनके बॉक्स वगैरह रखने के लिए आइस बॉक्स, ये सभी के लिए भी आपको 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यदि कोई मत्स्य पालक यदि किसी डैम के आसपास रहता हो और वो कंटिन्यू यदि हार्वेस्ट करता हो उसके लिए। और जैसे कि अभी साइंटिफिक टेक्निक से भी काफ़ी अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, इसमें कम पानी में आप ज़्यादा मछली पालन कर सकते हैं। जैसे कि हम पोंड वगैरह में करते हैं, इसमें 1,000 लीटर में 1 किलो मछली तैयार होती है। और ऐसे वाले जो हाई इंटेंसिव जो कैपेसिटी के होते हैं, जैसे RAS है, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, इसमें 1,000 लीटर में आप 40 से 50 किलो तक भी मछली प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये दिक्कत होती है, आपको 24 घंटे की बिजली की ज़रूरत होती है और आपका जो पानी होता है वो फिल्टर रहता है होता रहता है, तो फिल्टर वगैरह का आपको कॉस्ट बढ़ सकता है, उसका फीड वगैरह देने का टाइम टू टाइम, ये काफ़ी सारी चीज़ें बढ़े, तो सारा ही यानी मशीनरी पे ही डिपेंड होता है। और जैसे कि और भी योजनाएं, जैसे कि हमारे अलोर में एक और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत यानी फिश फीड मील बनी है, जो हैप्पी फीड मील के नाम से है, उसका कार्य पूर्ण हो गया है और उसमें मत्स्य के लिए खाना बन रहा है, तो आप वहाँ से भी फीड खरीद सकते हो। और भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि आपको मछली ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई लोरी वगैरह लेना हो इंसुलेटेड तो उसके लिए आपको 20 लाख मिलेगा, यदि रेफ्रिजरेटेड वाली लेनी हो तो उसके लिए 25 लाख रुपये मिलेगा। और जैसे कि केज कल्चर करना चाहते हो कोई बड़े बड़े जैसे झील वगैरह हैं उसमें, तो उसके लिए भी आपको 3 लाख रुपए एक केज के हिसाब से मिलेगा। तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसका आप लाभ ले सकते हो। तो इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप यानी मत्स्य विकास अधिकारी के ऑफिस में आ सकते हो अलवर जिले में।
1: जी बिल्कुल, तो इस तरह से विभाग है उसके द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और अब हम जानकारी दिलवाना चाहें किसान भाइयों को कि इनका लाभ लेने के लिए आवेदन की क्या प्रक्रिया है और जो कौन कौन किसान इसके लिए पात्र हैं उसके बारे में भी हमारे भाइयों को थोड़ा सा बताएं।
0: जी सर, इसकी आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। वैसे आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप मत्स्य विकास अधिकारी ऑफिस लाल डिगी में आ सकते हो, सीधा सदन में ये ऑफिस चल रहा है, तो यहाँ पे आप उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि इसके एप्लीकेशन करने के लिए आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए, 4 बीघा खुद की, या खुद की ना हो तो लीज पे होनी चाहिए, आपका आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी पासबुक होनी चाहिए उसका प्रिंट आउट वगैरह, और जो भी आप काम करना चाहते हो जैसे कि पोंड में फार्मिंग करना चाहते हो तो उसका DPR होता है, डिटेल जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है वो होनी चाहिए, या जो भी काम करना है तो उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। और भी आपके पास एक ऐसा भी शपथ पत्र तैयार करना होता है कि अभी तक आपने किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं लिया है और आप पहली बार मत्स्य संपदा योजना का लाभ ले रहे, इस प्रकार का भी शपथ पत्र तैयार होना चाहिए जो कि आपकी तहसील से बन सकता है आराम से। और आपका जो भी प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट जो बनाएगा और उसमें जो कॉस्ट वगैरह भाई कितना पैसा लगेगा, तो जो आपका कनिष्ठ अभियंता है उससे आप लिखवा के ला सकते हो, इसमें इतना एस्टीमेट लगेगा, तो वो रिपोर्ट भी उसके साथ संलग्न लगेगी। और आपका जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ों की जरूरत होगी, तो इससे आप लाभ ले सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, तो इस तरह से हमारे जो किसान भाई पात्र हैं वो इसका लाभ ले सकें। अब हम आपसे जानकारी दिलवाना चाहें कि आपके विभाग द्वारा जो नए मत्स्य पालक हैं उनको फिश फार्म के बारे में जानकारी दें और किस प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण कोर्स है उसकी व्यवस्था की गई है इसके बारे में भी हमारे जो किसान भाई हैं उनको जानकारी दें, इसमें आवेदन की क्या प्रक्रिया है वो भी बताएं।
0: हमारे यहाँ अलवर जिले में भी प्रशिक्षण दिया जाता है हर साल की बात ही, जैसे कि अभी हमने यानी 2 दिन का यानी

0: आवासीय प्रशिक्षण करवाया था 14-15 तारीख को आत्मा स्कीम के अंतर्गत, यानी उन्होंने फंडिंग किया था और हमने प्रशिक्षण करवाया था। तो ये काफी अच्छा प्रशिक्षण हुआ था जिसमें बाहर से भी लेक्चर बुलाए गए थे और हमारे द्वारा भी किया गया था और काफी सारे डेमोन्स्ट्रेशन किए गए थे, जाल कैसे काम लेते हैं, कैसे पॉन्ड बनाते हैं, कितना खाद यूज करते हैं, कौन कौन सी मछलियां काम में लेते हैं, कितना प्रोडक्शन होता है, आपको कितना प्रॉफिट होता है, ये सारी चीजों का प्रशिक्षण दिया गया था। और यदि अधिक जानकारी के लिए आप चाहते हो तो आपको एक फॉर्म मिलेगा जो हमारी ऑफिस में आके ले सकते हो, उसको भरने के बाद में उसको हम यानी आगे जयपुर भेजेंगे, जो हमारा डायरेक्टरेट है निदेशालय उसमें, तो वहाँ पे जैसे ही फार्मर 30 से 40 होंगे तो उन सभी फार्मरों का एक जगह प्रशिक्षण उदयपुर में कराया जाएगा, जो कि हमारा प्रशिक्षण यानी उदयपुर में एक यूनिट है वहाँ पे कराया जाता है। और यदि और भी ज़्यादा इच्छुक हो तो उसके लिए नेशनल फिशरी डेवलपमेंट जो बोर्ड है NFDB, तो वहाँ पे भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जो आपको सभी प्रकार की जो भी कल्चर जो प्रैक्टिस होती है वो दिखाई जाती है आंखों देखी, भाई ऐसे मछली होती है, ऐसे पालन किया जाता है, तो सारी चीज़ होगा
1: जी। बिल्कुल महेश चंद जी, अब हम हमारे जो भाई हैं उनको जानकारी दिलवाना चाहें कि मछलियों के जो बीज हैं और मछलियों के जो चारा है उसकी क्या व्यवस्था है, वो कहाँ संपर्क करें, उनके बारे में जानकारी बताएं जिससे कि बीज और चारा उपलब्ध हो सके उसके बारे में।
0: जी, जैसे बीज की बात करें तो बीज हमारे अलवर में मिल जाएगा आपको, जैसे हमारी सिलीसेड फिश हैचरी है जहाँ पे हम मछली का बीज तैयार करते हैं, और ये बीज जून जुलाई अगस्त तक तैयार किया जाता है हर साल की भांति, और इस साल भी हमने बीज तैयार किया जिसको स्पॉन बोलते हैं, छोटा बच्चा होता है वो 3 दिन का अंडे से निकला होता है, यानी उसको स्पॉन बोलते हैं, तो हम अधिकतर स्पॉन ही देते हैं या 7 से 8 दिन का बच्चा देते हैं हम। तो इस साल हमने 55 लाख स्पॉन बेचा है, जो फार्मर थे उनको भी बेचा है, और जो हमारे जो टेंडरर होते हैं जो बांधों के ठेकेदार उनको भी बेचा है। तो अभी अभी जितने भी फार्मर लेके गए तो उनको काफ़ी अच्छी उसकी सर्वाइबिलिटी मिली है, बच्चा मरा नहीं, अच्छी ग्रोथ किया है। और यदि हम उसके खाने पीने की बात करें तो हमारे जो भी घर में जो भी जो चीज़ अवेलेबल होती है, जैसे कि हमारे पास गेहूँ का चोकर है, या हमारा जैसे चना वगैरह उसका हुआ आटा वगैरह, और या हमारे पास मक्का है, और यदि हमारे पास सरसों की खली है, तो इनका सभी का यानी बराबर अनुपात में मिला के उस मछली के बच्चों को भिगा के इसको दे सकते हैं। तो मछली के बच्चों को यानी सुबह शाम जरूर खाना देना चाहिए, और खाना बिल्कुल फिक्स टाइम में देना चाहिए, ऐसे नहीं कि आज 10 बजे दिए कल 12 बजे दें तो मछली का बच्चा खाना खाने के लिए नहीं आता है। और यदि आपसे खाना वगैरह सारी चीज़ें नहीं भी बनती हैं तो आप बना हुआ खाना ले सकते हैं, जो कि हमारी हैप्पी फीड मील जो भी बनी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अलवर में, तो वहाँ से आपको उसका खाना मिल सकता है, और उसके कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको दे सकते हैं, तो हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। और अब डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान भाई हैं उनको ये जानकारी दें कि मछलियों में कुछ रोग भी हो जाते हैं क्या, और उनका वो नियंत्रण किस प्रकार से करें उसके बारे में।
0: जी, मछलियों में वैसे हमारे कॉमन रोग ऐसे होते हैं जैसे कि टेल रोट, जैसे कि उनका जो पूंछ होता है उनका गल जाना, और मछली के ऊपर जू आ जाती है जिसको पैरासाइट बोलते हैं। तो ये दो टाइप के पैरासाइट चिपक जाते हैं, आर्गुलस होता है, लर्निया होता है। कभी कभी ये होता है कि भाई ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी मछलियाँ मरने लग जाती हैं, तो ऐसे वाले भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे कि आप भाई मछली के जू वगैरह लग जाना, इसके लिए कैसे रोकथाम करें, तो इसके लिए जो मछली का जो भी बच्चा होता है उसको लीजिए, या तो उसको यानी 2 से 5% जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसमें डिप करके, या उसको पूंछ के किसी कपड़े से तो उसको निकालोगे तो वो मर सकता है। और यानी 2 से 5% नमक के घोल में उसको 102 मिनट के लिए रखें, और फिर उसको बाहर निकाल लीजिए। और यह आप वो कर सकते हैं, लाल दवा होती है उसका भी 2 से 3% घोल के अंदर उसको डिप करके निकाल सकते हैं। और टेल रोट डिजीज होगा तो उसके लिए भी आपको यही करना पड़ेगा। और यदि आपका जो पॉन्ड में यदि ज़्यादा ही हो गया है लर्निया आर्गुलस वगैरह, तो उसके लिए आप एक जो ब्यूटोक्स होता है वो डाल दीजिए, लेकिन मछलियों को बाहर निकालना पड़ेगा आपको, या दूसरी जगह शिफ्ट कर देना होगा। तो और या ऐसा नहीं कर पाते तो आप पूरे जो पॉन्ड है उसको सुखा दीजिए, जिससे कि अंदर जो भी जीव होगा वो मर जाएगा, और आप उसको 2-3 महीने के बाद में उसी में डाल सकते हो, ऐसे आप रोकथाम कर सकते हो।
1: जी बिल्कुल। और अब डॉक्टर साहब बताएं कि मछली पालन में हमारे जो किसान भाइयों को लागत तो कितनी आती है, और उनकी आय कितनी प्राप्त हो सकती है उसके बारे में, लागत और आय में कितना हमको किसान भाइयों को फायदा हो सके उसके बारे में बताएं थोड़ा।
0: लागत की बात करें तो पहले शुरुआत साल में तो आपको ज़्यादा आएगी, ज़्यादा इसलिए आएगी कि आपको सारी चीज़ें बनानी होगी, आपको पॉन्ड भी बनाना होगा, आपकी बोरवेल का भी खर्चा आएगा, और मछली का बीज वगैरह का भी, खाने वगैरह का भी, वो सारी चीज़ें वो लर्निंग स्टेज में रहेगी, तो आपको थोड़ा नुकसान भी हो सकता है पहली साल में, लेकिन इतना नहीं कि बराबर होगा।

0: इतना ज़्यादा नुकसान मिलोगे। जैसे आप सेकंड ईयर में जाओगे तो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आपने जैसे कि एक हेक्टेयर में हम डालते हैं 5 से 6 हज़ार फिंगरलिंग डाले, जो बच्चा होता है 50 से 100 ग्राम का वो वाला डालते हैं, तो उसका लगभग हमारे को उसका प्रोडक्शन मिल जाता है 4 से 5 टन के आसपास मिल जाता है। तो 4 से 5 टन का हम देखें तो अप्रोक्सीमेट जो मछली जो मार्केट में जो सेल होती है बिकती है वो 100 रुपये किलो बिकती है कम से कम, तो 4 से 5 लाख रुपए आपके आ गए। तो इसका यानी खाने का खर्चा भी निकाले तो 1 लाख होगा, तो आपके पास 3.5 से 4 लाख रुपए का आपको मुनाफा हो जाएगा। और यदि आपके खुद के घर पे यदि खाना बना के देते हो, यदि बाहर से यदि खाना नहीं लेके आते हो, जैसे कि जो कंपनी वगैरह का खाना हो तो 45 रुपए किलो 50 रुपए किलो ऐसा होता है, तो अपना खुद का खाना बना के देगो तो आपको आराम से 50-60 हज़ार रुपये का और भी मुनाफा होगा, तो आपको आराम से 4 लाख के आसपास आपको मुनाफा हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, यानी कि शुरुआत में हमारे भाइयों को 1 साल के लिए तो क्योंकि आप सारे संसाधन उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित ही उनमें लागत लगेगी, पर अगले नेक्स्ट साल में निश्चित ही इनकम हमारे किसान भाइयों को आए है जो मिलेगी। और अब हम अंत में आप मछली पालन के बारे में हमारे जो किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
0: जी संदेश तो ये देना चाहेंगे कि लोग ये नया नया काम है तो लोग इसको डरते हैं कि हमारे को नुकसान ना हो जाए, मछली मर सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यदि आप अच्छा प्रशिक्षण लोगे, हमारे से मिलोगे, जो भी हमारी जो प्रशिक्षण जो होते हैं उनमें भाग लोगे तो आपको आराम से वो सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो आपको एग्रीकल्चर से भी अच्छा आपको मुनाफा मिल सकता है। इसमें ऐसा होता है कि आप ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप मछली पालन करिए, मछली पालन के साथ भी आप और भी व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे कि जो बतख वगैरह होते हैं वो भी पाल सकते हैं, तो बतख दिन में पानी में घूमेगा आराम से, जो भी कीड़े मकोड़े होगा उनको खाएगा और आपको अंडा भी देगा, मांस भी मिलेगा, उसको आपको खाने देने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। और इस वजह से ये होगा कि आपको मछली को भी खाने डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बतख जो खाएगा उसमें जो पोटी करेगा वो उसको मछली खा जाती है और उसका खाद बन जाता है, तो वो भी काम आ सकता है। तो आप उसके साथ मुर्गी पालन भी कर सकते हो, भैंस गाय बकरी इन पालन का कर सकते हो, जो भी उनकी जो खाद होता है उसको उसमें पौंड में डालिए और उसका आराम से आपको डबल बेनिफिट मिल सकता है, तो ऐसा आप कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, डॉक्टर महेश चंद्र सोनवाल जी ने हमारे जो किसान भाई हैं उनको उन्नत मछली पालन के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी और उम्मीद है कि किसान भाई इसका लाभ उठाएंगे। तो डॉक्टर साहब जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा इन्वाइट किया और चाहूँगा कि अधिक से अधिक किसान भाइयों को इसका लाभ मिले और वो मछली पालन के लिए अग्रसर हों।
1: जी धन्यवाद।
2: जो मेहनत से देश सजाए, ESIC हर कदम पर साथ निभाए, सुख हो या संकट की घड़ी, ESIC साथ है हर घड़ी।
3: 1952 से आज तक ESIC बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत, लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी, हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
2: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा, 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
3: ESIC 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।
4: हाँ तो देखो किसान भाइयों ने ये तो सुनी भेंट वार्ता उन्नत मछली पालन, और अब हमारे जो किसान भाई उनका हम करवाते हैं मनोरंजन, सुनवाते हैं लोकगीत। सुनो किसान भाइयों ये लोकगीत है।

हाँ तो किशन भाई, अब आपको जानकारी देते हैं मछलियों में होने वाले रोग एवं निदान। जलीय जीव जंतु अपने वातावरण में स्वयं को भली भांति संतुलित रखने की वैसे तो क्षमता रखते हैं, परंतु जब रखरखाव में अनियमितता हो जाती है या वातावरण अधिक असंतुलित हो जाता है तो क्या उनमें कई बार बहुत से रोग लग जाते हैं और क्या संक्रमण बढ़ जाता है। मछली विभिन्न प्रकार के तनाव से अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर पाती और परिणाम स्वरूप क्या है वो रोगग्रस्त हो जाती है। प्रायः देखा गया कि मछलियों में अन्य प्राणियों की अपेक्षा रोग का प्रकोप कम है। क्षारीय जल में पाए जाने वाली मछलियाँ जो होती हैं उनमें मीठे जल में जो मछलियाँ पाई जाती हैं उनमें ज़्यादा रोग बढ़ने की संभावना होती है। तो जैसे अब क्रिप्टोविया एक रोग है, तो इसके लक्षण की बात करें, ये परजीवी रोगजनक प्रोटोजोआ है और इसके द्वारा गलफड़ों का रंग फीका पड़ जाता है जो हल्के पीले रंग के दिखाई देते हैं। तो मछली क्या है, अपने यानी सिर को नीचे की तरफ करके और टैंकी यानी सतह पर आराम करती है और कभी कभी ये अपने इर्द गिर्द यानी चक्कर लगाने लगती है। तो इसके लिए हमारे किसान भाई क्या करें, जैसे उपचार की अपन बात करते हैं तो जैसे जोंक जो होते हैं ये एक रोग एक तरह से प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, तो जोंकों को टैंक जो होता है उसमें या तालाब जो होता है उससे बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये रोग वाहक का काम करती हैं। और क्या है, जो मछलियाँ जो होती हैं अपनी उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था हमें समय समय पर करनी चाहिए, ताकि अगर हमारी मछली हैं वही स्वस्थ रहेंगी तो उनमें रोग लगने की संभावना भी एक तरह से कम होती है। तो अब जो घुड़ी की सुई है वो हमारी तरफ इशारा कर रही है भाई हमारा समय पूरा होने के लिए है। उससे पहले हम आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता श्री नीरज भगत। आइए किसान भाइयों, आपसे लेते हैं आज्ञा। जय जवान जय किसान, सभी किसान भाइयों को राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती, आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है, FM 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: डिस्को डांसर, इस फिल्म में आपने सुना बप्पी लहरी को। अनजान का गीत था, संगीत बप्पी लहरी का।
1: जो मेहनत से देश सजाए, ESIC हर कदम पर साथ निभाए। सुख हो या संकट की घड़ी, ESIC साथ है हर घड़ी।
2: 1952 से आज तक ESIC बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी, हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर

0: बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
1: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
0: ESIC 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।

कुर्बानी, इस फिल्म में आप सुन रहे थे मनहर उदास, कंचन और आनंद को। इंदीवर का गीत और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म से सुन रहे थे आप ये गीत, आवाज़ किशोर कुमार की, अनजान का गीत, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

राजा हिंदुस्तानी फिल्म में आप सुन रहे थे अलका याग्निक को। समीर का गीत था संगीत नदीम श्रवण का। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं लोक संगीत।

0: लोक संगीत कार्यक्रम में आपने सुना ये राजस्थानी लोकगीत संजय बागी और सीमा मिश्रा की आवाज में।
1: जो मेहनत से देश सजाए, ESIC हर कदम पर साथ निभाए, सुख हो या संकट की घड़ी, ESIC साथ है हर घड़ी।
2: 1952 से आज तक ESIC बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी। हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
1: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
2: ESIC 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।

0: जो मेहनत से देश सजाए, ईएसआईसी हर कदम पर साथ निभाए। सुख हो या संकट की घड़ी, ईएसआईसी साथ है हर घड़ी।
1: 1952 से आज तक ईएसआईसी बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी, हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
0: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
1: ईएसआईसी 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में ये राजस्थानी लोकगीत, और इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है

0: यूज कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा फेयर प्राइस शॉप्स है, उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से

0: एक फैसला होता है। हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
2: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
3: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
2: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: कागज कलम नहीं इस बार मोबाइल की नई पहल है, लेखा जोखा जानकारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना दिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9।

फर्ज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, आनंद बख्शी की वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आपके लिए कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं CID 909 इस फिल्म का गाना, SH बिहारी का लिखा हुआ, धुन OP नैयर की है, गायक कलाकार आशा भोसले और महेंद्र कपूर।

आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं अराउंड द वर्ल्ड, इस फिल्म का गाना। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक स्वर मुकेश और शारदा के।

कैफी आजमी के बोल खयाम का संगीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे आखिरी खत फिल्म का गीत। इसी के साथ आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: सी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आते। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया।

0: को चूमे हम जब चले तू।
1: सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और

देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं न कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया, जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है, क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की माँ का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया।

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह,

0: सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।
1: तुमसे

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला, तुम गाने में हमको हराया,
2: हाँ,
1: तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
2: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: पीछे काय को झगड़ा करना जी?
2: हाँ।
1: बोला, आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
2: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो, एक चौकरा एक चौकरी गार्डन में घूमता है, तो फिर कबाब में अड्डी काय को?
2: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: बोला आगे नहीं आना।
2: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
2: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
2: आएगा।
1: तुम आएगा?
2: आएगा।
1: अच्छा, तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
2: अबे तुम कैसे पीछे जाता है? ये कसर का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार।
1: यो यो यो यो यो। अयो अयो।
0: सन 1965 फिल्म

सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल राय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन रही है।

0: दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थी। तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।
1: खामोशियां

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई थी।

सन 1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की यह फिल्म है रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा। सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए। सन 1976 नागिन। सन 1979 जानी दुश्मन। और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थी। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की माँ नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए।

0: अपने जीवन के इस दुख को सुनील दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
1: एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हीरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS, ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता

निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे। सुनील दत्त को हमारा

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

कभी कभी कोई अजनबी अपना सा लगने लगता है, प्यारा सा, दिल की धड़कन सा। फिर एक दिन वो खामोशी से दूर चला जाता है, बहुत दूर। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक खालीपन छोड़ जाता है जो हर जगह आपको घेरे रहता है। हम उसके लौटने की उम्मीद करते हैं पर वो नहीं लौटता। हम खुद को समझाते हैं, सोचते हैं, कहाँ, कैसे हमने उसे खो दिया, क्यों। खुद को कोसने लगते हैं, अपनी भावनाएं, अपने जज्बात, अपने आंसू, अपना वक्त हम बर्बाद करते चले जाते हैं। अफसोस, हम ऐसे रिश्तों की कद्र करते हैं जो हमारे होते ही नहीं हैं। हाँ, ये सच है, वो रिश्ते हमारे होते ही नहीं हैं।

कुछ रिश्ते रेत की तरह होते हैं, जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करो उतनी ही तेजी से फिसल जाते हैं। हाँ, कोई आपके दिए गए सारे प्यार के बावजूद किसी और को चुनता है तो उसे ऐसा करने दो। कोई बिना वजह खूबसूरत रिश्ते में दूरी बनाता है तो उसे जाने दो। किसी ऐसे शख्स को चुनना जिसने आपको कभी चुना ही नहीं, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। हाँ, ऐसे रिश्ते में ऊर्जा लगाना व्यर्थ है।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के दर्शन का लाभ पर्वतारोही की अपेक्षा वो अधिक अच्छी तरह से ले सकता है जो किसी दूर समतल क्षेत्र में खड़े होकर उस सौंदर्य को निहारता है। बस ऐसे ही जिंदगी में नजदीकियों की अपेक्षा कभी कभी दूरियां भी बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि बहुत करीब से अक्सर हम सत्य को साफ साफ देख नहीं पाते। और जीवन तो अभिनय से नहीं, सच के साथ चलता है। हाँ, सच के साथ।

जिसे आपके जीवन से जाना है वो सबसे आरामदायक किनारे पर भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। ऐसे में किसी को जबरदस्ती रोकना, गिड़गिड़ाना, मिन्नतें करना, रोना सब मूर्खता है। सच तो ये है कि स्वयं को कभी किसी ऐसी डोर से मत बांधो जिसकी पकड़ खुद तुम्हारे हाथ में नहीं हो।

कुछ प्रेम कथाएं योजनाओं से नहीं संयोगों से जन्म लेती है, न उन्हें गढ़ा जाता है न रचा जाता है, वे बस घट जाती हैं अपने आप ही। और जब ये प्रेम कथाएं किसी उपन्यास के आखिरी पन्ने पर आते आते दम तोड़ देती है, तब दिल रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे चुपचाप जीने लगता है। मन के किसी परकोटे के भीतर घायल सा तड़पता हुआ। काश हम समझ पाते कि किसी रिश्ते को शब्द नहीं बचाते कभी। कई बार सम्मान और संवेदनशीलता ही उसका अंतिम

आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और

0: लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सीरीज का चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है।